0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রে বা মোহনায় যারা মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাঁদের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে 25 সেপ্টেম্বর দুপুর পর্যন্ত ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে, যার গতিবেগ বেড়ে ঘণ্টায় 60 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর ফলে সমুদ্র উত্তাল থেকে প্রবল উত্তাল হয়ে উঠবে। দুপুরের পর থেকে আবহাওয়ার ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। মৎস্যজীবীদের পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার উপকূলবর্তী অঞ্চল, বঙ্গোপসাগরের উত্তর, দক্ষিণ মধ্য ও সংলগ্ন অঞ্চলে 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাছ ধরতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। এখন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে অলকা সিং। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ

संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी

0: में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is scheduled to continue till October 7. The Prime Minister yesterday interacted with participants of the Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi and praised their ongoing journey as a significant step towards grassroots nation building. During the interaction, Mr. Modi asked the participants about their experiences on the road, their interactions with people and the new learnings they had gathered during the journey.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: Union Minister for Health and Family Welfare J.P. Nadda will commemorate 8 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and 5 years of the Ayushman Bharat Digital Mission at Arogya Manthan 2026 in New Delhi today. The program will feature a series of thematic deliberations focusing on key aspects of health assurance and digital health. The 4th edition of the UP International Trade Show, UPITS, will begin today at the India Expo Center and Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. Union Home Minister Amit Shah and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will inaugurate the 5-day event. Themed Ultimate Sourcing begins here. The exhibition will continue till September 29, connecting the state's entrepreneurs, manufacturers and exporters directly with the global market. Briefing the media, Uttar Pradesh MSME Minister Bhupendra Chaudhary highlighted the objective of establishing Uttar Pradesh as a global sourcing hub. He said the state is home to over 96 lakh MSME units and stated that UPITS will provide them with new opportunities for market expansion, investment, exports and employment. Defence Research and Development Organisation, DRDO, has signed the first high-value deep tech project agreement with a startup named Zero MK India Private Limited towards collaborative efforts.

श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि ने भक्तिपूर्वक श्री राम की वंदना करके उनसे अपने चरणों में अटूट अनुराग देने की प्रार्थना की। शीलवती तथा विनम्र सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसुईया के चरणों में सिर नवाकर उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि पत्नी सीता जी की विनम्रता देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। अनुसुईया जी ने मधुर और कोमल वाणी में सीता जी के स्त्री धर्म पालन का बखान किया।

0: ग्रेटर नोएडा नगरे स्थिते इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इत्यत्र आरप्स्यते। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंच दिवसीय अस्य आयोजन से उद्घाटन करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभाया अधिवेशनानंतरम एंटिग्वा बारबुडा इत्यस्य प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन इत्येतं मिलितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ जयशंकर उक्तवान् यद् विकास सहकार क्षमता निर्माणं तथा जलवायु परिवर्तन संबद्धं सहयोगं च अग्रे वर्धते। सह राष्ट्रमंडलस्य शासनाध्यक्षानां सम्मेलनस्य सफलतां प्रति भारतस्य दृढां प्रतिबद्धतामपि प्रकटितवान्। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेशस्य एतस्य समीपे दक्षिण ओडिशायाः च उपरि स्थितस्य गभीर न्यून दाब क्षेत्रस्य प्रभावेण ओडिशायाः विभिन्नेषु भागेषु प्रबलाति प्रबल वृष्टिः अनुवर्तते। अनेन संवेदनशीलेषु क्षेत्रेषु जलाप्लावः मार्गेषु यातायातस्य व्यवधानं तथा आप्लावन सदृशी स्थितिश्च उत्पन्नास्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की है और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया है। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में जारी इन मोटरसाइकिल रैलियों का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को करीब से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इसका विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। भारत ने इसराइल फलस्तीन संघर्ष

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन

0: प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
1: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और

0: एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
1: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
3: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
7: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, IT, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

0: मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
1: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीक की ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
2: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्ते में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनफिंग से मिलकर काम करने का वादा।
0: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में, और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजन बैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इंटरैक्ट विद पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेवा यात्रा फॉर सेकेंड डे टुडे। Make in India initiative aimed at transforming the country into manufacturing nation completes 12 years today. FSSAI proposes nationwide ban on manufacture and sale of analog paneer. Fourth UP International Trade Show to begin today at India Expo Center and Mart in Greater Noida. Indian duo of Kamaljeet and Suruchi Singh storms into final of mixed team 10-meter air pistol event at Asian Games in Nagoya, Japan. And defending champions India hold Azerbaijan to draw in 8th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. Another news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today with video conferencing with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. More from our correspondent.
5: The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experience from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages, with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition, but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilization at different locations along the route. Yashasvi Kiryal, Akashvani News, Delhi.
4: The Prime Minister yesterday interacted with participants of the Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi and praised their ongoing journey as a significant step toward grassroots nation building. During the interaction, Mr. Modi asked the participants about their experiences on the road, their interactions with people, and the new learnings they had gathered during their journey. Today marks 12 years of Make in India. It was on this day in 2014 when the initiative was launched with the ambition of becoming a global hub for manufacturing, design and innovation. The initiative has transformed India's manufacturing landscape by expanding production, investment and capabilities across industries. We have a report.
6: Over the years, Make in India has opened new opportunities for businesses and investors to participate in India's manufacturing journey. The initiative has subsequently been expanded under Make in India 2.0. The initiative now focuses on 27 sectors, which include 15 in manufacturing and 12 in services. Guided by minimum government, maximum governance, it has also sought to modernize processes and policies. Under the initiative, India's electronics production increased nearly sevenfold from 1.9 lakh crore rupees in 2014-15 to over 13 lakh crore in 2025-26. During this period, Indian Railways manufactured nearly 55,000 coaches over 2014-2024. Further, under the Make in India initiative, country's indigenous defense production increased from 46,429 crore rupees in 2014-15 to a record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. The initiative now goes beyond producing more goods and focuses on building the skills, technology and capacity needed to make them in India. With Priya Mondal, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
4: The Food Safety and Standards Authority of India, or FSSAI, has proposed nationwide ban on manufacture and sale of analog product as paneer. In a notification, the FSSAI stated that the products already licensed or registered under analog in dairy context category shall discontinue the use of the term paneer in the nomenclature, labeling or marketing. The FSSAI has proposed the amendment in the Food Safety and Standards Prohibition and Restrictions on Sales Regulation
7: Nations 2011 for analog paneer. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and the relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through Sri Ann or millets.
8: Millets such as pearl millet, sorghum, finger millet, kudo, little millet and barnyard millet have been part of India's traditional diet for centuries. The government of India is now promoting these grains as Sri Anna. The observance of 2023 as the International Year of Millets also helped raise their global profile. Millets provide dietary fiber, protein, iron, calcium, magnesium and other micronutrients. They can form part of a balanced diet and are particularly relevant for managing lifestyle diseases such as diabetes and obesity. Senior faculty at Jaipur Sawai Mansingh Medical College, Dr. Punit Saxena says millets are naturally gluten-free and nutritionally rich.
9: Millets are nutrient-dense whole grains and can be used as an alternative source as a staple food to refined cereals like wheat and rice when eaten in appropriate portions. Millets are rich in complex carbohydrates which provide sustained energy and slow release of the nutrients and gives a feeling of fullness to stomach. Also, they are gluten-free, so they can be consumed by people suffering from gluten allergy, that is celiac disease.
8: Millets also needs less water, making them suitable for water conservation and climate resilient farming. Rajasthan has traditionally been a major millet growing state, particularly for pearl millet. The focus is now shifting from production to processing, value addition and better market access. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
7: This is Akashwani giving you the news.
10: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
7: The fourth edition of the UP International Trade Show will begin today at the India Expo Center and Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. Union Home Minister Amit Shah and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will inaugurate the five-day event. More from our correspondent.
11: The event is expected to witness participation of over 2,400 exhibitors, 1.5 lakh B2B buyers and more than 4.5 lakh general visitors. Over 550 international buyers from 85 countries are also expected to attend the event. Partner countries for this edition are Austria, Japan, Russia, Singapore, Belarus and Vietnam. Additionally, reflecting the prominent role of women in trade and industry, around 300 women representatives will actively participate in the event. The exhibition will showcase various industries and sectors including agriculture, automobiles, defense, IT, health, tourism and renewable energy. A major highlight this year is the introduction of the One District, One Cuisine initiative, which will be featured alongside the One District, One Product scheme to present the state's traditional culinary heritage to the world. With Ankit Kumar, Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
7: Anant Chaturdashi is being celebrated across Mumbai today, marking the culmination of the 10-day Ganeshotsav that began on Ganesh Chaturthi. More from our correspondent.
12: Mumbaikars will bid a tearful adieu to their beloved Ganpati Bappa amid beats of Dhol Tasha, Pushpavrishti and chants of Ganpati Bappa Moria. Thousands of devotees are expected to participate in the grand farewell to Lord Ganesh. The visurgent processions of Lalbagh Charaja and Mumbai Charaja are among the most iconic sites of the city. The Maharashtra Tourism Department has set up a special viewing pavilion at Girgaon Chowpatty for foreign tourists to witness Ganesh immersion ceremony and experience Mumbai's vibrant cultural traditions. Major immersion sites including Girgaon Chowpatty, Dadar, Juhu and other locations have been equipped with special arrangements for diabetes. The Brihanmumbai Municipal Corporation has deployed civic personnel, lifeguards, ambulances, motorboats to facilitate safe and smooth immersions. Prarthana, Akashvani News, Mumbai.
7: Prime Minister Narendra Modi has paid tribute

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। कार्यक्रम में आपकी दोस्त सविता पोद्दार सभी दोस्तों का स्वागत करती है और सभी की स्वागत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के

एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी दोस्त सविता कार्यक्रम रसधारा में। और आज रसधारा में, जी हाँ, आज रसधारा में हम बात करने वाले हैं किसकी? जी आज हम बात करेंगे सादगी की, सेवा की, और समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका विकास पहुँचे, हम बात करने वाले हैं आज उसी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और गीत सुनेंगे।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रसधारा में, और बात आज हम करेंगे सादगी, सेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास की। ये एक ऐसा त्रिकोण है जो एक आदर्श, समतामूलक और कल्याणकारी समाज का निर्माण करता है। भारत के महान विचारकों, विशेषकर महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन में यह विचार मुख्य रूप से देखने को मिलता है। दोस्तों, इस धारणा को हम तीन स्तंभों की तरह समझ सकते हैं। पहली धारणा हमारी है सादगी, सिंप्लिसिटी। जी हाँ, इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले सुनवाएंगे आपको एक और गीत और उसके बाद हम बात करेंगे सादगी की, सेवा की और विकास की।

आइए दोस्तों पहले एक मौसम की सूचना दें। आज के दिन 9 बजे से अगले 2 से 3 घंटों के बीच कोलकाता, हुगली, हावड़ा, बांकुरा के कुछ जिलों के हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी। हल्की से मध्यमतर बादलों के गर्जन और बिजली की कड़क के साथ हल्की से मध्यमतर बारिश होने की संभावना है। सूचना समाप्त हुई। और बात हम कर रहे हैं सादगी, सेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक के विकास की। सादगी की बात करें तो सिंप्लिसिटी अहंकार का अंत करती है। सादगी सादगी केवल रहन सहन या कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विचारों की पवित्रता है। दोस्तों, जब एक व्यक्ति सादगी अपनाता है तो उसके भीतर से विलासिता और अहंकार का अंत हो जाता है। संसाधनों का सही उपयोग होता है। सादगी हमें सिखाती है कि हम प्रकृति और समाज के जो संसाधन हैं उनका उपभोग तो करें, लेकिन उनकी ज़रूरत के अनुसार, लालच के लिए नहीं। उनका हम संग्रह ना करें, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक उस प्रकृति की जो ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुँचे। अंतिम व्यक्ति से जुड़ाव। एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति समाज के सबसे पिछड़े और गरीब व्यक्ति के दर्द को गहराई से अनुभव करता है। जी हाँ, जो साधारण जीवन जीता है व्यक्ति, वो समाज में सब तबकों के लोगों के साथ मिलकर के सबके जीवन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है और उनके दर्द को महसूस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश खुद करता है और दूसरों को भी बढ़ाता है।

0: दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम रसधारा में। और आज हम बात कर रहे हैं सेवा, सादगी और अंतिम व्यक्ति के विकास तक की। हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक सूचना आपके साथ करेंगे साझा। जी हाँ, डाक अदालत अधीक्षक RMSSB मंडल की अध्यक्षता में RMSSB मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक RMSSB मंडल कार्यालय 2MG रोड हावड़ा, चौथी मंजिल हावड़ा, प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111-01 में गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस अदालत में RMSSB मंडल से संबंधित RMS सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल rmssbdn@gmail.com ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें के माध्यम से अधीक्षक RMSSB मंडल हावड़ा 7111-01 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अनस्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या 0332641549 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस VC का लिंक यथासमय साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामलों और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।
1: मैंने

जी हाँ, किसी के लिए सपने चुनना ये तभी संभव है जब हम किसी की सेवा में समर्पित हों। दोस्तों, निस्वार्थ भाव सेवा का अर्थ बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या प्रशंसा की इच्छा के दूसरों की मदद करना होता है। यदि हम सेवा करना चाहते हैं तो बदले में उससे कुछ पाने की कोशिश ना करें, ना ही चाह रखें। सहानुभूति से सहानुभूति तक यह केवल दान देना नहीं, बल्कि पीड़ित व्यक्ति के स्वाभिमान को बनाए रखते हुए उसको सशक्त बनाना है। हम यदि किसी को सहानुभूति देते हैं तो उसके स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तभी हम किसी व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। सच्ची सेवा नर सेवा ही नारायण सेवा है। कहते हैं समाज के कमज़ोर वर्गों की सेवा करना ईश्वर की सच्ची पूजा होता है। सच्ची तो है, ईश्वर में ही तो भगवान बसता है। और यदि हम किसी के गम को देखें और उसके सहलाएं उसको, तो कहते हैं हम ईश्वर से प्रेम करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, समाज के अंतिम व्यक्ति तक यदि विकास ना पहुँचे तो वो विकास अधूरा रहता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुसार समाज का विकास तब तक अधूरा है जब तक कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति, पिछड़े, गरीब और शोषित व्यक्ति तक विकास के लाभ को

ना पहुंच पाए। नीचे से ऊपर तक का अमीर का व्यक्ति यह दृष्टिकोण तभी आर्थिक सिद्धांतों में माना जाता है कि ऊपर का अमीर वर्ग समृद्ध होगा तो नीचे तक फायदा पहुंचेगा के विपरीत है। यह सीधे सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य देने की बात करता है। व्यक्तित्व विकास की बात होती है। अंतिम व्यक्ति के विकास का मतलब केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि उसका भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, ताकि वह समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जी सके। तभी ये जो गम का दरिया है वो पटेगा। दोस्तों, आज हमने रसधारा में बात की सादगी, सेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास की। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। आइए आपके साथ एक सूचना साझा करते हैं। 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 25/10/2026 को अपराह्न 12:30 पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल, योगायोग भवन, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 70012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों में पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 70012 के नाम भेजी जाए। और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@theindiapost.gov.in, adpgcow@gmail.com या pg.wb@theindiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व होनी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या फिर 0332201261 या फिर 0332201500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकारी आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता, और कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश करते करते मैं आपकी दोस्त सविता फ़िलहाल आपसे चाहूँगी इजाज़त। मुलाकात होगी फिर ऐसे ही किसी दिन। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके समक्ष पेश करते हुए ले रही हूँ मैं आपसे विदा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: आपकी तरफ उम्मीदों की दृष्टि से देश देख रहा है, युवा पीढ़ी देख रही है, आने वाली पीढ़ियों को भी ये आपकी बातें बहुत काम आने वाली है। आपको मेरा एक और आग्रह भी है कि आप यात्रा पूरी होने के बाद, क्योंकि आप 10-10 रूट के लोग हैं, अभी तो आप जब चल रहे हैं तो 20 लोग हैं, लेकिन जब पहुंचेंगे तब आप 500 लोग हो जाएंगे। जब वडनगर पहुंचेंगे तब 500 लोग होंगे, 7 अक्टूबर को आप पहुंचेंगे। जब काशी पहुंचेंगे वो भी 500 लोग होंगे। इन 500 लोगों ने 2-3 घंटे एक साथ बैठ करके अपने अनुभवों की चर्चा करनी चाहिए।
0: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ के में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों का नाम, लेवल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और में इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणादायक है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते, इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में बहुत तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया।

मेरी अंजुमन में आ जा, यही तेरी अंजुमन है। मेरी अंजुमन में आ जा, यही तेरी अंजुमन है। न तो हर रविश रविश है, न तो हर चमन चमन है। मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचिता। सामिन, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:16 हो रहे हैं और इसी के साथ आगाज होता है आकाशवाणी कोलकाता के संचिता चैनल से और न्यूज़ ऑन AIR के ऑफिशियल ऐप से हमारे और आपके महबूब उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का।

बेहिजाबाना अंजुमन में आ, बेहिजाबाना अंजुमन में आ, कम सुखन महफिल सुखन में आ, कभी फुर्सत मिले तो पिछले पहर शब गजीदों की अंजुमन में आ। जी हाँ सामईन, अंजुमन की महफिल सज गई है और आपका इंतज़ार है। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ गए होंगे। आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल से उर्दू प्रोग्राम अंजुमन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त शहनाज रहमत। सामईन सलाम सुबह कबूल फरमाइए। सामईन उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में हम आपके लिए तरह तरह के गुलदस्ते सजा कर ले आते हैं और आज की इस महफिल में देखते हैं आपके लिए क्या है। हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं आईना से, तो आइए सुनते हैं आईना। आईना बताएगा हर एक अक्स पर अपने, आईना बताएगा हर एक अक्स पर अपने, हालात और ज़माने की कहाँ गर्द रही थी। तो आज के आईने में हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश के मुताल्लिक। आज 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश है। वो 25 सितंबर 1916 को पैदा हुए। दीनदयाल उपाध्याय मारूफ सियासी मुफक्किर, मुसन्निफ और भारतीय जनसंघ के अहम रहनुमाओं में से हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी सामाजिक खिदमत, कौमी फिक्र और सियासी नज़रियात की तश्कील के लिए वक्फ की। उनका नुमाया फिक्री तसव्वुर एकात्तम इंसानवाद था, जिसमें इंसान, मुआशरा और कौम की हम आहंग तरक्की पर जोर दिया गया। उनके सियासी व फिक्री नज़रियात आज भी हिंदुस्तानी सियासी मुबाहिस में ज़ेर गुफ्तगु रहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1968 में हमसे जुदा हो गए। हम आकाशवाणी की जानिब से उन्हें उनके यौम पैदाइश के मौका पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। आप सुन रहे थे आईना और अब पेश है एक खूबसूरत नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म एक राज से। नगमा निगार है मजरूह सुल्तानपुरी, जबकि मौसिकार चित्र गुप्त।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा फिल्म एक राज से। सामईन,

आसमानी बिजली, तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ तेज हवाओं का इम्कान है और अगले 2 से 3 घंटों के दौरान आज के दिन सुबह 9:50 बजे से लेकर मशरक़ी मिदनापुर, मगरबी मिदनापुर और हावड़ा, हुगली और बांकुरा अजला के बाज़ इलाकों में इसका खासा इम्कान है। इसलिए महफूज रहें, अपना ख्याल रखें, बगैर ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। ये था मौसम का हाल। सामईन, अब पेश है मंजरनामा।

आज मंजरनामा का मौजू है अकलियतों के लिए 15 नुकाती प्रोग्राम। अकलियतों के लिए 15 नुकाती प्रोग्राम हमारे मुल्क में एक कसीर मजहबी, कसीर लसानी और कसीर सकाफती मुल्क है, जहाँ मुख्तलिफ मजाहिब और बिरादरियों के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं। इसी तनु को हिंदुस्तान की जमहूरी और तहजीबी शिनाख्त का अहम हिस्सा समझा जाता है। अकलियती बिरादरियों की तालीमी, मुआशी और समाजी तरक्की के लिए हुकूमत हिंद ने मुख्तलिफ अदवार में मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। उन्हीं में एक अहम इक़दाम है अकलियतों के लिए 15 नुकाती प्रोग्राम। सामईन, 15 नुकाती प्रोग्राम बुनियादी तौर पर इस बात पर जोर देता है कि अकलियती बिरादरियों को तरक्की के मौके, तालीम, रोज़गार, बुनियादी सहूलतों और सरकारी फलाही स्कीमों तक मुनासिब रसाई हासिल हो। 15 नुकाती

यानी कि 1008 किलो हर्ष पर आज अंजुमन प्रोग्राम में आपके साथ हूँ आपकी मेज़बान शहनाज। सामईन, आप बखूबी अब तक जान गए होंगे कि आप हमारा ये प्रोग्राम न्यूज़ ऑन AIR के ऑफिशियल ऐप पर भी सुन सकते हैं, साथ ही किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचेता चैनल सर्च करके रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन बराह रास्त सुन सकते हैं। सामईन हमारे साथ बने रहें, सुबह के 10:15 से 11 तक हम आपके साथ होते हैं और आपका हमारा ये साथ, मोहब्बतों का ये सफ़र इसी तरह से जारी और सारी रहे, यही दुआ है। सामईन, अब आपकी समातों के हवाले एक और ख़ूबसूरत नगमा करती हूँ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। समात फरमाए फिल्म सावन की घटा से ये सदाबहार नगमा, जिसके नगमा निगार हैं SH बिहारी जबकि मौसिकार हैं OP नैयर।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। दोपहर के 12:18 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम सुरभि में। दोस्तों सुरभि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा है से। चर्चा है में आज हम बात करेंगे अंत्योदय दिवस की। दोस्तों हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में दिवंगत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। वे एक दीर्घकालिक राजनीतिज्ञ थे और भारतीय जनसंघ के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिससे भाजपा का उदय हुआ। अंत्योदय का अर्थ है सबके गरीब का उत्थान करना। यह दिन समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्षिणपंथी हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक थे। वे भारतीय जनसंघ के नेता भी थे। दिसंबर 1900

67 में वे जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। 1940 के दशक में आरएसएस के सदस्य रहते हुए उपाध्याय ने हिंदुत्व दर्शन को बढ़ावा देने के लिए मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म की स्थापना की। 1963 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। फरवरी 1968 में मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उद्धरण था कि भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता ये है कि यह जीवन को एक एकीकृत संपूर्णता के रूप में देखती है। दोस्तों चर्चाएं में आज हम चर्चा करेंगे, चर्चा हमने की अंत्योदय दिवस की, इसके अलावा हम चर्चा करेंगे पुत्री दिवस की। परिवारों और समाज में पुत्रियों के प्रेम शक्ति उपलब्धियों और उपस्थिति का जश्न मनाने का एक विशेष अवसर है। यह लड़कियों के लिए समान अवसर, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को प्रोत्साहित करने का भी अवसर प्रदान करता है। पुत्री दिवस पुत्रियों के प्रति सम्मान और परिवार एवं समाज में उनके महत्व को पहचानने का अवसर है। परिवार इस दिन का उपयोग अपनी पुत्रियों के प्रति प्रेम, कृतज्ञता और प्रोत्साहन व्यक्त करने के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए करते हैं। इस अवसर का एक व्यापक सामाजिक संदेश भी है, यह है कि लड़कियों की शिक्षा, समान अवसर, सुरक्षा, स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बारे में बातचीत को प्रोत्साहित कर सकती है। पुत्री दिवस पुत्रियों को महत्व देने, उनकी योगदान को पहचानने, परिवारों में उनके विकास और आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह अवसर लड़कियों के साथ समान व्यवहार करना भी सिखाता है, साथ ही उनके साथ ये भी जागरूकता फैलाता है कि उनके महत्व को समझना चाहिए। भारत में बालिका के समर्थन का व्यापक संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों में भी परिलक्षित होता है, जो लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। तो दोस्तों आज सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत हमने चर्चा की पुत्री दिवस की, इसके अलावा अंत्योदय दिवस की।

सुरभि कार्यक्रम के अगले पायदान पर प्रस्तुत है कार्यक्रम पहल। पहल में हम भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक पहलों में से किसी एक पहल पर प्रकाश डालते हैं। तो आइए, आज की पहल है दीनदयाल अंत्योदय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गरीबों विशेषकर महिलाओं के लिए सशक्त संस्थाएं बनाकर और इन संस्थाओं को विभिन्न वित्तीय सेवाओं और आजीविका के साधनों तक पहुंच प्रदान करने के गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना है। डे NRLM मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे राज्यों को उनकी राज्य विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्य योजनाएं बनाने की सुविधा मिलती है। जिन ब्लॉकों और जिलों में डे NRLM के सभी घटक, चाहे SRLM या सहयोगी संस्थाओं या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे, वे गहन ब्लॉक और जिले होंगे, जबकि शेष गैर गहन ब्लॉक और जिले होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठित संस्करण है। NRLM का नाम 29 मार्च 2016 से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। NRLM ने देश भर के 600 जिलों, 6000 ब्लॉकों, 25 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांव में फैले 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं प्रबंधित स्वयं सहायता समूहों और संघबद्ध संस्थानों के माध्यम से कवर करने और उन्हें 8 से 10 वर्षों की अवधि में आजीविका समूहों के लिए सहायता प्रदान करने का एजेंडा निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त गरीबों को उनके अधिकारों, हकों और सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच, जोखिम का विविधीकरण और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान की जाएगी। NRLM गरीबों की अंतर्निहित क्षमताओं का उपयोग करने और उन्हें देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में सहभागिता भूमिका करने की क्षमताओं से पूरक बनाने में विश्वास रखता है। इस योजना से प्रमुख

0: समावेशन के अलावा आजीविका संवर्धन और अभिसरण, सहभागी सामाजिक मूल्यांकन का आयोजन करके सभी परिवारों की पहचान की जाएगी और उनकी संवेदनशीलता के आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाएगा। यह श्रेणीबद्धता सबसे गरीब, एकल महिला और महिला प्रधान परिवारों, विकलांगों, भूमिहीनों और प्रवासी श्रमिकों को ध्यान में रखकर की जाएगी और इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गरीबों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, विशेष रूप से संस्थानों के प्रबंधन, आजीविका, ऋण अवशोषण और ऋण योग्यता के संबंध में है। यह मिशन ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानों, नवाचारों, बुनियादी सांचे ढांचे के निर्माण और बाजार समर्थन के माध्यम से उनके रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में भी सहायता प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूहों की संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने और एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाने के लिए उन्हें सहायता के रूप में परिक्रामी निधि का प्रावधान। सघन ब्लॉकों में स्वयं सहायता समूहों को संघों के माध्यम से सामुदायिक निवेश सहायता कोष उपलब्ध कराना ताकि वे ऋण दे सकें और सामान्य सामूहिक सामाजिक आर्थिक गतिविधियां कर सकें। वित्तीय समावेशन मॉडल की शुरुआत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना, बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग और समन्वय स्थापित करना और जीवन स्वास्थ्य आदि के हानि के लिए कवरेज प्रदान करना। स्वयं सहायता समूह द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान, बैंकों की ऋण दर और 7% के बीच के अंतर को कवर करने के लिए किया जाएगा। ग्रामीण गरीबों की गरीबी कम करने से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना, अत्यधिक विकेंद्रीकृत योजना के साथ राज्यों को गरीबी कम करने के लिए अपने स्वयं की कार्य योजना विकसित करने की स्वतंत्रता होगी। NRLM को जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और पंचायत राज संस्थानों के साथ उपयुक्त संबंध स्थापित करने होंगे। इसके फायदे, स्वयं सहायता समूहों का सक्रिय अस्तित्व और उनके लेखा पुस्तकों के अनुसार कम से कम पिछले 6 महीनों से होना चाहिए, ना कि SHG खाता खोलने की तारीख से। स्वयं सहायता समूहों को पंचसूत्र का पालन करना चाहिए, अर्थात नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित रूप से एक दूसरे को ऋण देना, समय पर ऋण चुकाना और खातों की अद्यतन पुस्तकें रखना। NABARD द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मानदंडों के अनुसार योग्य स्वयं सहायता समूहों के संघों के अस्तित्व में आने पर बैंकों को सहयोग देने के लिए ये संघ ग्रेडिंग प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। निष्क्रिय पड़े मौजूदा स्वयं सहायता समूहों को भी ऋण के लिए पात्र माना जाएगा, बशर्ते उन्हें पुनर्जीवित किया जाए और वे कम से कम 3 महीने की अवधि तक सक्रिय रहें। इसके लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है वे हैं: आधार संख्या, सबूत की पहचान, निवास का प्रमाण, मतदाता की पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो दोस्तों, आज पहल कार्यक्रम में हमने बात की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरभि। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना ये फिल्म कर्तव्य से गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म स्वर्ग नरक से किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में गीत का।

और आनंद बख्शी संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने। और इस गीत के साथ ही आपकी दोस्त सविता आपसे इजाज़त चाहेगी, मुलाकात होगी फिर ऐसे ही किसी दिन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरभि, मैं थी सविता पोद्दार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृह मंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: शामिल हो रहा हूं। ये 4th संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय किया।

0: दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया, तीसरे में यूपी में आए और चौथे में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपे के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan.
3: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
2: Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. The Prime Minister said the infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among the women of the country has also increased. Vice President C.P. Radhakrishnan has said, in an increasingly interconnected world, emerging challenges cannot be effectively addressed by nations working in isolation. Interacting with participants of the 4th edition of the International Strategic Engagement Programme, or INSTEP, at the Uparashtrapati Bhavan today, Mr. Radhakrishnan said the Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family and one future, reflects collective well-being of people around the globe. INSTEP is an initiative aimed at promoting regional security and closer cooperation among like-minded nations. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements

0: Indian duo Kamaljeet and Surajit Singh won gold in the mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan today. The pair shot 484.6 in the final to finish 6.6 points ahead of South Korea's Soo-hyun Hong and Gyeon Chu, who took silver with 478. Kamaljeet and Surajit had topped the qualification with 587 points, including 29 inner tens. Indian men's and women's kabaddi teams have also entered the finals at the Asian Games after registering comprehensive victories in their respective semi-final matches. Indian squash players have assured themselves of 3 medals at the Asian Games, with Joshna Chinnappa and Velavan Senthilkumar reaching the mixed doubles semi-finals, while Anahat Singh and Abhay Singh entered the last 4 in singles. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Viksit Bharat can be realized only with the contribution of everyone. Interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan. Government decides to provide skill training to 70,000 rural youths under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana from next month. Foreign ministers of South Africa and Brazil condemn Pahalgam terror attack, reaffirm zero tolerance towards terrorism during IPSA Dialogue Forum meeting on the sidelines of UNGA. Heavy rain due to depression wreaks havoc in several parts of Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।

0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
4: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
5: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
7: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
6: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
8: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिगड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
6: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्ते। আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িত প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে। একটি ঘোষণা, শতবর্ষের পথে আকাশবাণী কলকাতা, এই উপলক্ষে আকাশবাণীর সংগ্রহশালা থেকে শুনছেন বিশেষ অনুষ্ঠান প্রতি বুধবার রাত 9:30 গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে ও DTH বাংলা পরিষেবায়। এই অনুষ্ঠান চলবে 25 আগস্ট 2027 পর্যন্ত। শুনতে ভুলবেন না প্রতি বুধবার রাত 9:30 গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে ও DTH বাংলা পরিষেবায় আকাশবাণীর সংগ্রহশালা থেকে বিশেষ অনুষ্ঠান। ঘোষণাটি শেষ হল। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন তিন তালে তবলা, শিল্পী পণ্ডিত সুজিত সাহা, হারমোনিয়াম সহযোগিতায় হিরণ্ময় মিত্র।

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে। ঘড়ির কাঁটায় এখন সময় 4:59। এখন খবর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই প্রশান্ত কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में आज उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यवहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त तरक्की हुई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के विद्यार्थियों के एक समूह से मुलाकात की। वे राष्ट्रीय एकता यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन आए थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रमुख विचारक और समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आज पुणे में गणेश प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्राएं निकाले जा रही हैं। शोभा यात्राओं को देखने और गणपति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि

0: आकाशवाणी के साथ
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं राकेश पंत।
2: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बसंती देवी, जो महान पर्यावरणविद है और प्रकृति की संरक्षण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। बसंती देवी उत्तराखंड की धरती पर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। उन्होंने स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को एकजुट कर कोसी नदी को बचाने के साथ ही जंगलों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर 5 के जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम चलाई। उनके इसी काम को देखते हुए सन 2016 में उन्हें नारी शक्ति सम्मान और 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया। तो बसंती देवी जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बसंती जी। तो आपसे जानना चाहूंगा, कोसी नदी और उसके जलागम क्षेत्र को बचाने की आपकी मुहिम की शुरुआत कैसे हुई, तब क्या परिस्थितियां थी, आपने किस तरह इस मुहिम को आगे बढ़ाया?
3: पहले तो उस नदी में बहुत पानी था, खेतों में भी इतना अच्छा जमीन में पानी और सब खेती पाती होती थी। धीरे धीरे जब जंगल पूरा काट दिया महिलाओं ने, जंगल काट के तो पानी खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गए और इसलिए बहुत परेशानी होगी। तब लोग कहने लग गए अब हम पानी भी कहाँ से पिए, और खेती में भी हमारे खेतों में भी पानी नहीं आ रहा है। तब मैं गांव-गांव में जाकर मैंने महिला संगठन बनाया। मैंने कहा जब पानी नहीं आएगा तो तुम्हारे यहाँ तो इतनी अच्छी खेती होती थी और इतना ज्यादा पानी आता था और नदी में और सब कुछ था, जब पानी नहीं आएगा तो कहाँ से पियोगे पानी, कहाँ से खेती होगी और कैसे हम जिंदा रहेंगे, तो इसके लिए तो तुम सब सोचो। मैंने कहा जंगल जब पूरे पेड़ काट दे रहे हो और फिर वो सड़ जाते हैं तो उनको फिर तुम जला देते हो, तो तुमको ये सोचना चाहिए कि जब जंगल बचेगा, पानी आएगा, तब खेती भी अच्छी होगी, अपने लिए भी, हमारे पानी पीने के लिए और रुपाई करने के लिए, खेती पाती सब ठीक करने के लिए भी तब अच्छा होगा, तब हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम जिंदा ही कैसे रह सकते हैं। मैं फिर 6-7 दिन के बाद जंगल के रास्ते गई तो महिलाओं से कहा बैठो आप, मैं तुमको सब बात सुनाती हूँ। जब जब पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य जिंदा कैसे रहेंगे, खेती कैसे होगी, और ये तो तुमको सोचना ही चाहिए। मैं आज तुम्हारा संगठन बनाती हूँ, तुम अभी जंगल से अब घर को चलोगे, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव में, सब जगह जाकर मैं सबका संगठन बना के सबको एक करूंगी। मान गए वो, फिर आ गए, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाकर पूरे कोसी नदी के वहां सोमेश्वर घाटी में उधर उधर सब जगह वो काम किया तो सब मान गए, जंगल नहीं काटा तो जंगल बच गया, फिर पानी आने लग गया धीरे धीरे।
2: जैसे आपने जो काम किया वो खासकर कोसी नदी बागेश्वर के आसपास, आप आश्रम में बहुत समय तक रहे, आपके मन में कैसे आया कि प्रकृति से जुड़े नदी को बचाएं, कैसे आपने सोचा ये सारी चीज?
3: क्यों, मैं तो जब इलाके में रहती थी, जब वहाँ प्रकृति ऐसी होगी, जब पानी खत्म हो गया, खेती नहीं होने वाली हुई, सब इस प्रकार का हो गया और लड़ाई मार झगड़ा और होने लग गया, तब मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा जब सब घर घर में ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो हमारा उत्तराखंड की देव भूमि महान कैसे बनेगी, तो यही इसी को लेकर मैंने गांव गांव में उनसे कहा कि हमको अपना जीवन, अपना देश, अपना गांव, अपना परिवार को महान बनाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी देव भूमि महान बनेगी। अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के देव भूमि को हमको महान बनाना है, हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छा वो होगा तो आगे की पीढ़ी भी अच्छी होगी, तो यही मेरा काम होता है।
2: बसंती जी, जब आप अभियान शुरू कर रही थी, लोगों को जोड़ रही थी अपने साथ, इसके लिए कितनी चुनौतियां आई लोगों को जोड़ने में, महिलाओं को जोड़ने में, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं थी, आपने उनको संगठित किया, कितनी परेशानियां चुनौतियां आपके सामने आई?
3: चुनौतियां तो बहुत आई, और सब लोग कहने लगे बड़ी आ गई है, ये तो आश्रम में रहती है और हमारी महिलाओं को इतना भड़का रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है करके, कहीं वो महिलाओं का महिला मंगल दल बनाया और उनको मैंने कहा चलो अब आ, तुम्हारे पास लकड़ियां हैं, अब तुम यहाँ से अब लकड़ी नहीं ले जाओगे, जंगल बचाना है।

0: ऐसे करके वो फिर आ गए मेरे साथ गांव में, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाते जाते मैंने 200 गांव में महिला संगठन बनाया। तो सब उनको बताया, सब मान गए बहुत अच्छी तरह। तो ऐसे करके गांव गांव में जाकर वातावरण अच्छा बना दिया। तो जंगल बचाने का, पानी बचाने का, महिला सशक्तिकरण, भाई लोगों को नशा मुक्त करना, तो ऐसे ऐसे करके सब वातावरण अच्छा बना दिया। मैंने कहा तुम भी थोड़ा सीखो महिलाओं से। मैंने कहा संगठन बन गया है, जंगल बचाना है, पानी बचाना है, खेती अच्छी बनानी है, बच्चों को पालना पोसना है, आगे पढ़ाना है। जैसे लड़कों को तो स्कूल भेजने वाले हुए, लड़कियों को नहीं, लड़के लड़कियों को पढ़ाने का नहीं हुआ। जब मैंने कहा लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो क्या होगा, लड़कियों को भी पढ़ाना है। तो बालवाड़ी खोली हमने भी आश्रम के द्वारा, एक बालवाड़ी से 200 गांव में बालवाड़ियां खोली लड़कियों को पढ़ाने का। और भाई लोगों को नशा मुक्त किया मैंने। जब परिवार तुमसे क्या सीखेगा और बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा वातावरण कैसे अच्छा होगा, तुमको तो ये सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल। हाँ। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ ही नशा उन्मूलन के क्षेत्र में आपके जो प्रयास है वो सराहनीय है। आज जब आप अपने कार्य को देखते हैं वसंती जी, आपने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति को लेकर जो कार्य किए, कैसा महसूस होता है कि आपने हमारी पीढ़ियों को इतना कुछ आपने दिया है, कैसा लगता है?
0: अच्छा लगता है, क्योंकि लोग तभी तो सब जगह किताबों में भी लिखते हैं, ऐसे वो भी देते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, तभी तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो ऐसे करके धीरे धीरे वातावरण बहुत अच्छा हो गया गांव-गांव में, सब जगह। और बच्चे भी अच्छे हो गए, उनको भी अच्छी तरह पालना पोसना और ऐसा कर दिया। और लड़कियों को भी, जब हमने और बालवाड़ी में, एक बालवाड़ी से लेकर 200 गांव में बालवाड़ी खोली लड़कियों के लिए, तो वो भी पढ़ने लग गए, लिखने लग गए। तो ऐसा वातावरण बन गया तो सब गांव गांव में बहुत खुश हो गए। तो और फिर और सरकार के द्वारा फिर लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूलों में उनको भी भर्ती कर दिया, बालवाड़ी से लेकर फिर वो और स्कूलों में भी ऐसे पढ़ने लगी।
1: अच्छा, जो कोसी नदी का आपका अभियान था वो बहुत ही सराहनीय अभियान रहा है और कई आज के जो जनरेशन है वो भी उससे प्रेरणा लेती है। आपको लगता है किस तरीके से आपने कोसी नदी, क्योंकि उस टाइम कोसी नदी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, आपने कैसे, आपके मन में आया कि इसको बचाया जाए?
0: पहले तो कोसी नदी में बहुत पानी आता था, जब जंगल कट गया तो पानी नहीं आने वाला हुआ। तब मैंने कहा, तभी तो मैं 7 दिन गांव में गई, कोई महिलाएं नहीं मिली, और वो गांव के रास्ते ही जंगल में गई, वहां मुझे वो महिलाएं मिल गई। मैंने उनसे कहा कि तुमने इतना जब जंगल काट के खत्म कर दिया, पानी और जंगल पेड़ काट के, और ऐसे इतने तुमने कनखले बना दिए, वो कर दिया, वो सड़ गए हैं और वो बेकार हो गए हैं, जब पानी नहीं आएगा तो क्या पियोगे, कैसे जिंदा रहोगे, कैसे खेती पाती होगी, ये तो तुम सोचो, तुम नहीं सोचते हो तो फिर और क्या होगा, ऐसे ऐसे करके तो वातावरण फिर बहुत अच्छा हो गया।
1: संती जी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सके?

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार दोस्तों, मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 5:22 का और इसी के साथ मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी कार्यक्रम उर्वशी। और उर्वशी में आज हम बात करेंगे सुरुचि की। सुरुचि यानी रसोई की दुनिया। जी हाँ, रसोई की दुनिया में आज फिर एक ऐसे मिठास लेकर हम हाजिर हैं जिसका नाम सुनते ही त्योहार, सावन, तीज, रक्षाबंधन और मिठाई की दुकान पर सजे खूबसूरत गोल गोल घेवर याद आने लगते हैं। लेकिन आज बात सिर्फ घेवर खाने की नहीं होगी, आज हम बात करेंगे घेवर बनाने की भी। और वो भी ऐसे घेवर जिसे सुनते सुनते आपको लगे कि अरे ये तो घर पर भी ट्राई किया जा सकता है। वैसे घेवर को देखकर पहली बार आपके मन में क्या आता है, ये जाली जाली से मिठाई आखिर बनती कैसे है? क्योंकि सच कहें तो घेवर बाकी मिठाइयों से थोड़ा अलग है। रसगुल्ला है तो गोल और मुलायम, लड्डू है तो गोल मटोल, बर्फी है तो सीधी सादी चौकोर, लेकिन घेवर ये तो अपनी पूरी जालीदार शान के साथ आता है। ऊपर से सुनहरा, अंदर से हल्का और कुरकुरा, और अगर उसके ऊपर ठंडी ठंडी रबड़ी रख दी जाए, बादाम पिस्ता सज जाए और केसर की खुशबू आ जाए तो बस समझिए मिठाई ने त्योहार को पूरी तरह अपने नाम कर लिया है। तो आज सुरुचि में हम बनाएंगे घर का घेवर, साथ साथ जानेंगे इसकी सही सामग्री बिल्कुल नाप तौल करके, बैटर यानी घोल की कंसिस्टेंसी का राज और तेल या घी का सही तापमान, घेवर में इतने सारे छोटे छोटे छेद कैसे बनते हैं, चाशनी कितनी गाढ़ी होनी चाहिए और कौन सी छोटी गलतियां आपको घेवर बिगाड़ सकती है। तो अगर आपके पास कागज और पेन है तो निकाल लीजिए, और अगर आप रसोई में हैं तो इंग्रेडिएंट सामने रख लीजिए क्योंकि आज की रेसिपी में मेजरमेंट बहुत काम आने वाला है। फिलहाल तैयारी कीजिए इंग्रेडिएंट्स लिखने की और तब तक सुन लेते हैं हम हमारे कार्यक्रम का पहला गाना।

आप सुन रहे थे फिल्म क्वीन से जुगनी, अमित त्रिवेदी की आवाज में, बोल अनविता दत्त के और संगीत से सजाया अमित त्रिवेदी ने। तो दोस्तों उर्वशी में सुरुचि, उर्वशी के अंतर्गत आज चल रहा है सुरुचि, और सुरुचि में बात कर रहे हैं आज बड़े ही टेस्टी से घेवर के बारे में। चलिए तो अब इसके इंग्रीडियंट्स के बारे में जान ले सीधे। लगभग 6 से 8 लोगों के लिए हमें चाहिए घेवर बनाने के लिए 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच घी, 1/2 कप ठंडा दूध और लगभग 3 से 3.5 कप ठंडा पानी। इसके अलावा 1 छोटा चम्मच नींबू का रस चाहिए। अब घेवर को तलने के लिए लगभग 700 से 800 ग्राम घी या तेल रखिए। यहाँ क्वांटिटी सुनकर घबराइए मत। घेवर को तलने के लिए कढ़ाई में पर्याप्त गहराई और तेल या घी की मात्रा ज़रूरी है, क्योंकि बैटर को बीच में डालते ही वो तेज़ी से फैलता है और बबल्स बनते हैं। चाशनी के लिए चाहिए 1 कप चीनी और लगभग 1/2 कप पानी। और अगर आप सादा घेवर नहीं बल्कि मलाई या रबड़ी घेवर बनाना चाहती हैं तो लगभग 1 से 1.5 कप से 2 कप तैयारी रबड़ी रख लीजिए। सजाने के लिए 2 बड़े चम्मच बारीक कटे बादाम, 2 बड़े चम्मच पिस्ता और थोड़ी सी केसर की पंखुड़ियाँ। अब सामग्री तो हमें तैयार कर ली, चलिए देखते हैं कि इस साधारण से सामग्री से वो जादुई जालीदार मिठाई कैसे बनेगी। सबसे पहले लेते हैं एक बड़ा और गहरा बर्तन। इसमें डालेंगे 4 चम्मच घी। अब इसमें डालना है 1/2 कप ठंडा दूध। घी और दूध को अच्छी तरह से फेंटना है। कोशिश कीजिए कि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बारी आती है मैदे की। हमारे पास 2 कप मैदा है, लेकिन पूरा मैदा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और लगातार फेंटते जाइए। ये छोटी सी बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने पूरा मैदा एक साथ डाल दिया और फिर पानी डालकर घोल बनाने की कोशिश की तो उसमें गुठलियाँ बन सकती है, और घेवर के लिए हमें स्मूथ बैटर की ज़रूरत होती है। तो मैदा थोड़ा थोड़ा डालिए, फेंटिए, फिर थोड़ा मैदा डालिए और फिर फेंटिए। अब धीरे धीरे इसमें ठंडा पानी डालना शुरू करेंगे। हमने लगभग 3 से 3/4 कप पानी रखा है, लेकिन ध्यान रखिए पूरी मात्रा एक साथ नहीं डालनी है। क्यों? क्योंकि घेवर के बैटर में सबसे बड़ा खेल मेजरमेंट से भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी का होता है। आपको ऐसा बैटर चाहिए जो काफ़ी पतला हो। चम्मच उठाकर जब बैटर वापस बर्तन में डालें तो वो मोटी लकीर बनाकर गिरने के बजाय पतली लगातार धार में नीचे जाए, और आपका बैटर पकौड़े के घोल जैसा गाढ़ा दिख रहा है तो समझ जाइए अभी पानी की ज़रूरत है। लेकिन पानी डालने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा डालिए, फेंटिए, फिर देखिए, और जब आपको लगे कि बैटर स्मूथ और पतला हो गया है तब इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। अब इसे एक बार अच्छी तरह मिलाइए, और मेरी सलाह मानिए तो इस बैटर को एक बार छलनी से छान ज़रूर लीजिए। ये जो छोटा सा स्टेप है ना, ये बहुत काम का है, और अगर मैदे का कोई छोटी गुठली रह गई तो वो निकल भी जाएगी और बैटर एकदम स्मूथ हो जाएगी। अब एक सवाल, इतना पतला बैटर क्यों? क्योंकि घेवर की जाली उसी से बनेगी। घेवर का बैटर अगर बहुत गाढ़ा होगा तो गर्म घी में डालते ही वो एक मोटी परत बनने लगेगा, लेकिन बैटर पतला है तो जब उसे ऊपर से पतली धार में गर्म घी में डालेंगे वो फैलते हुए बबल्स और होल्स बनाएगा, और यही होल्स आगे चलकर हमारे घेवर को उसकी पहचान देंगे। अब चलिए कढ़ाई की तरफ। इसके लिए ऐसी गहरी कढ़ाई लीजिए जिसमें तेल या घी डालने के बाद ऊपर काफ़ी जगह बच रही हो। कढ़ाई में लगभग 700 से 800 ग्राम घी या तेल डालकर गर्म कीजिए। अब यहाँ सबसे ज़रूरी है तापमान। तेल बहुत ठंडा होगा तो बैटर ठीक से जाली नहीं बनाएगा और ज़्यादा तेल सोख लेगा। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो बैटर डालते ही तेज़ी से ऊपर आ सकता है और बाहर भी उछल सकता है, इसलिए शुरुआत में तेल को अच्छी तरह से गर्म कीजिए और फिर आँच को नियंत्रित रखिए। अब आता है घेवर बनाने का असली मज़ा। हमारे पास बैटर तैयार है, तेल गर्म है, और अब बैटर को एक बहुत पतली धार कढ़ाई के बीचों बीच से ऊपर से डालनी है। फिर क्या करनी है बताएंगे ज़रूर, फिर उसे सुन लेंगे। उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गीत शिल्पा राव की आवाज़ में, फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से।

0: तो बात हो रही थी भाई घेवर बनाने के तरीके की, तो जैसे कि कहा कि पहले क्या करना है कि जो बैटर, जो पतली बैटर है, उसकी पतली धार कढ़ाई के बीचों बीच ऊपर से डालनी है। ध्यान रखिए चम्मच या कटोरी को तेल के बिल्कुल पास ले जाकर बैटर नहीं डालना है, थोड़ी ऊंचाई से पतली धार में डालना है। जैसे ही बैटर गर्म तेल में जाएगा आपको बबलिंग दिखाई देगा, जी हाँ, और देखिए बैटर फैल रहा है और छोटे छोटे उसमें होल्स यानी कि छेद बन रहे हैं, यही तो घेवर है। अब तुरंत दूसरी लेयर नहीं डालनी है, कुछ सेकंड इंतज़ार कीजिए। जब पहली लेयर, पहली जो परत है थोड़ी सेट हो जाए, तब फिर से थोड़ी सी बैटर की पतली धार डालिए, फिर कुछ सेकंड रोकिए और फिर एक और पतली धार, और इसी तरह धीरे धीरे लेयर्स बनती जाएगी। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि बीच का हिस्सा पूरी तरह बंद नहीं करना है, घेवर को जाली और उसका जो कैरेक्टर, उसका जो चरित्र, जो शेप है, इसी खुली जगह और लेयर से बनता है। तो आप देख सकते हैं कि घेवर बनाना असल में पेशेंस का काम है। एक बार बैटर डाल दिया जाए तो सोच लिया कि बस घेवर तैयार, ऐसा नहीं है, परत दर परत इसे बनाना पड़ता है। और शायद इसी वजह से जब हम बाजार से सुंदर सा घेवर खरीदते हैं तो उसकी मेहनत का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। अब मान लीजिए आपका बैटर गर्म तेल में डालते ही बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बबल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो घबराइए मत, तेल शायद ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो चुका है। आँच को थोड़ा नियंत्रित कीजिए, अगर बैटर डालने पर वो ठीक से फैले नहीं रहा तो मोटी परत बनी रही, मोटा बैटर बना है, और बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, हो सकता है वो थोड़ा गाढ़ा हो। यानी घेवर में तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पतला बैटर, सही गर्माहट और धीरे धीरे परत दर परत उसको बनाना। अब जब घेवर धीरे धीरे सुनहरा होने लगे तब इसे थोड़ा और पकने दीजिए। घेवर का रंग हल्का गोल्डन होने तक और टेक्सचर जो है वो कुरकुरा यानी कि क्रिस्प दिखाई देने लगे तो इसे बहुत ही सावधानी से बाहर निकालना है। यहाँ किचन सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखिए, गर्म तेल के साथ काम करते समय हाथ और चेहरा कढ़ाई से दूर रखें और घेवर निकालने के लिए लंबे चमटे या फिर उपयुक्त किसी बर्तन का इस्तेमाल करें। घेवर को निकाल कर जालीदार रैक या प्लेट पर रखिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल सके। और अब हमारे पास है एक सुंदर सुनहरा जालीदार घेवर, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि घेवर के मिठास के लिए हमें चाहिए अब चाशनी। एक छोटे से पैन में डालिए एक कप चीनी, आधा कप पानी, इसमें मध्यम आंच पर पकाइए, चीनी धीरे धीरे घुलेगी, अब हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी भी नहीं चाहिए। घेवर के लिए हल्की जो स्टिकी कंसिस्टेंसी वाली चाशनी पर्याप्त है, अगर चाशनी बहुत गाढ़ी हो गई तो घेवर पर इवनली स्प्रेड नहीं होने वाली है, जी हाँ, बराबरी से वो जो है नहीं फैलने वाला है, और अगर बहुत पतली होगी तो मिठास और कोटिंग भी वैसी नहीं आएगी। इसलिए चीनी घुलने के बाद चाशनी को थोड़ा पकाइए, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा तार वाली कंसिस्टेंसी तक नहीं ले जाना है। अब हमारा घेवर थोड़ा ठंडा हो गया है, उसके ऊपर धीरे धीरे चाशनी डालिए। ध्यान रखिए चाशनी डालते समय एक साथ पूरा का पूरा जो चाशनी है उसे उड़ेलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी डालिए और फैलने दीजिए। अब अगर आपको सादा घेवर पसंद नहीं है तो रुक सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बादाम पिस्ता डालिए और आपका सिंपल सा क्रिस्प घेवर जो है वो तैयार हो गया। लेकिन अगर आज त्यौहार का मूड है, मेहमान आने वाले हैं या घर में कोई ख़ास मौका है तो चलिए इसे बनाते हैं रबड़ी घेवर। इसके लिए हमने रखी है लगभग 1 से 2 कप ठंडी रबड़ी। घेवर के ऊपर रबड़ी को अच्छी तरह से फैलाइए, उसके लेयर्स बनाइए, उसकी परत बनाइए और ऊपर से डालिए बारीक कटे बादाम, फिर पिस्ता, थोड़ी सी केसर। बस देखिए हमारी रबड़ी वाली जो घेवर है वो तैयार है। अब मुझे बताइए इसे देखकर कौन कहेगा कि घर पर बनाया गया है, है ना? तो चलिए अब घेवर के इंग्रेडिएंट्स हमने बता दिए, कैसे बनाया है, बनाना है वो भी बता दिया, पर अब ज़रूरी है थोड़ा सा ब्रेक लेने की और सुन लेंगे सुनिधि चौहान की आवाज़ में अधूरे, जी हाँ, फिल्म मैरी कॉम से प्रशांत इंगोली के बोल और संगीत से सजाया है शशि सुमन ने। पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

तो आज बातें हो रही है सुरुचि में घेवर के बारे में। जी हाँ, घेवर बनाना तो हमने सीख लिया। वैसे घेवर को लेके एक दिलचस्प बात भी है, इसे अक्सर राजस्थान और उत्तर भारत के त्योहारों से जोड़ा जाता है, खासकर सावन और तीज के मौसम में इसकी मांग भी बढ़ जाती है। घेवर का त्योहारों से रिश्ता सिर्फ स्वाद का नहीं, त्योहारों में मिठाई बनाने की जो परंपरा है उसमें घेवर अपने खास बनावट और फेस्टिव अपीयरेंस की वजह से अलग ही पहचान रखता है। और शायद यही वजह है कि घेवर सिर्फ मिठाई की दुकान पर रखी चीज नहीं लगती, इसे देखते ही त्योहार का एहसास होने लगता है। अब जरा बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की। मान लीजिए आपने पूरा बैटर तैयार किया, तेल गर्म किया, पहला घेवर बनाया, वो जालीदार बनने के बजाय मोटा और भारी सा हो गया, तो क्या करें? तो सबसे पहले बैटर देखिए, क्या वो बहुत गाढ़ा तो नहीं, और अगर हाँ तो थोड़ा ठंडा पानी डालकर बैटर को एडजस्ट कीजिए। दूसरा, तेल के गर्माहट को चेक कीजिए। अगर तेल बहुत ठंडा है तो घेवर ज़्यादा तेल सोख सकता है और क्रिस्प नहीं बनेगा, और अगर बहुत तेज़ बहुत ज़्यादा गर्म है तो बैटर डालते ही तेज़ी से फूल सकता है और आपको कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। और तीसरी बात, एक साथ ज़्यादा बैटर मत डालिए, घेवर को धीरे धीरे बनाना है, एक पतली धार, फिर थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दूसरी पतली धार, यही प्रोसेस रिपीट करना है। और चौथी बात, घेवर को जल्दी निकालने की कोशिश भी मत कीजिए, लेयर्स को सेट होने का समय दीजिए, क्योंकि किचन में कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती रेसिपी नहीं हमारी जल्दबाजी होती है। और एक और ज़रूरी सवाल, क्या घेवर पहले से बनाया जा सकता है? हाँ, आप घेवर पहले बनाकर रख सकती हैं। अगर आप उसे क्रिस्प रखना चाहती हैं तो उसे अच्छी तरह ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में रखिए, लेकिन रबड़ी या क्रीमी टॉपिंग जो है सर्विंग के करीब लग सर्विंग जब करेंगे आप, उसको जब पड़ोसेंगे किसी को, तभी लगाना बेहतर है। क्यों? क्योंकि रबड़ी का जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे घेवर को नरम कर सकती है, और आपको क्रिस्पी और क्रीमी दोनों का मज़ा चाहिए तो सर्विंग के कुछ समय पहले ही रबड़ी लगाइए। और अगर आप छोटे बच्चों के लिए सर्व कर रही हैं तो घेवर के बड़े टुकड़ों के बजाय छोटे पोर्शंस में काट कर देना बहुत ही सुविधाजनक हो सकता है। अब ज़रा प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि खाना स्वादिष्ट हो ये तो ज़रूरी है, लेकिन जब मिठाई खूबसूरत दिखाई दे तो खाने का मज़ा और बढ़ जाता है। आप एक पूरे घेवर को बड़ी ऊपर से रबड़ी लगाकर सर्व कर सकती हैं, इसे छोटी पीसेस में काट कर इंडिविजुअल प्लेट्स में डाल सकती हैं, ऊपर रबड़ी, थोड़ा पिस्ता, थोड़ा बादाम, केसर के दो चार पंखुड़ियाँ, और अगर आपके पास त्यौहार के लिए सजावट का सामान है तो चांदी का वर्क वगैरह भी लगा ही सकती हैं। तो दोस्तों, आज सुरुचि में हमने सिर्फ घेवर की रेसिपी नहीं सीखी, हमने ये भी जाना कि खूबसूरत मिठाई के पीछे कितनी बारीकी छिपी होती है। सही मेजरमेंट जरूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बैटर की कंसिस्टेंसी, सही टेम्परेचर ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। जी हाँ, और रेसिपी के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो वो घेवर जिसे देख कर हमें लगता है कि ये सिर्फ हलवाई ही बना सकता है, हमारी अपनी रसोई में भी बन सकता है। तो अगली बार जब बाज़ार में खूबसूरत घेवर दिखाई दे तो मन करे कि एक डब्बा घर ले जाए तो खरीदिए ज़रूर, लेकिन कभी समय मिले तो घर पर बनाने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका पहला घेवर परफेक्ट ना हो लेकिन वो आपका होगा और शायद अगली बार उससे भी सुंदर बने। तो आज सुरुचि में हमने बनाई ये कैसे मिठाई, देखने में जालीदार, स्वाद में कुरकुरी, ऊपर से मलाईदार और त्योहारों की यादों से भरी हुई। तो फिलहाल मैं हूँ आपकी दोस्त पापिया, आप सुन रहे थे सुरुचि। रसोई में कुछ नया बनाते रहिए, अपने हाथों के स्वाद को, अपनों को खुश करते रहिए। और हाँ, आज अगर घेवर बनाने की हिम्मत कर ही ली है तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी जाली कितनी खूबसूरत बनी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी, नए स्वाद और रसोई के कुछ दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और आपकी रसोई हमेशा खुशबू और स्वाद से भरी रहे। तो ये थी दोस्तों सुरुचि। सुरुचि में आज हमने सीखा घेवर कैसे बनाते हैं। फिलहाल उर्वशी का आज का अंक यही समाप्त होता है। जाते जाते हम अगला गाना सुनेंगे, श्रद्धा कपूर और शंकर महादेवन के वास में रॉक ऑन 2 फिल्म से। बने रहिए हमारे साथ ही मीडियम भी 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप अगला प्रोग्राम, और आपसे वापस हमारी मुलाकात होगी 6:10 पर। जी हाँ, 6:10 पर हम बातें करेंगे आज अंत्योदय अवधारणा और समावेशी विकास पर, हिंदी प्रोग्राम वार्ता में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियां और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कर्नाटक से मालदीव के लिए जीआई टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की 1 मीट्रिक टन खेप को रवाना किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना है। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य समेत 22 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का

0: मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 6:11:35 एग्जैक्टली और आप सुन रहे हैं हिंदी वार्ता। तो नमस्कार श्रोताओं, 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। यह दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अंत्योदय ये शब्द सुनने में छोटा है लेकिन इसके भीतर समाज और विकास को देखने की एक व्यापक सोच भी छिपी हुई है। अंत्योदय का सरल अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय, यानी विकास की मुख्य धारा में उस व्यक्ति को भी शामिल करना जो सामाजिक या आर्थिक कारणों से पीछे रह गया है। आज के कार्यक्रम में हम इसी अवधारणा को समझेंगे और जानेंगे अंत्योदय और समावेशी विकास का आपस में क्या संबंध है। आखिर ऐसा विकास कैसा होना चाहिए जिसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके और किसी देश की प्रगति को केवल बड़े शहरों, बड़ी इमारतों या आर्थिक आंकड़ों से नहीं बल्कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के जीवन में आए बदलाव से क्यों देखा जाना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं अंत्योदय की अवधारणा आखिर क्या है। अंत्योदय दो शब्दों से मिलकर बना है, अंत और उदय, अर्थात अंतिम व्यक्ति का उदय। इस विचार का मूल भाव यह है कि विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले और सबसे अधिक ध्यान उन लोगों पर दिया जाना चाहिए जो समाज में सबसे अधिक वंचित या कमजोर स्थिति में हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का विचार के साथ अंत्योदय की अवधारणा को भी महत्व दिया। उनके विचार में व्यक्ति को केवल आर्थिक इकाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, मनुष्य की आवश्यकताएं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर होती है। इसलिए विकास का उद्देश्य केवल आय बढ़ाना नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाना भी होना चाहिए। यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर व्यक्ति कौन है? इसका कोई एक निश्चित चेहरा नहीं। वो ग्रामीण क्षेत्र का गरीब परिवार हो सकता है, छोटा किसान हो सकता है, मजदूर हो सकता है, दिव्यांग व्यक्ति हो सकता है, शिक्षा से वंचित बच्चा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है या ऐसा परिवार हो सकता है जिसे स्वास्थ्य, रोजगार, आवास या बुनियादी सुविधाओं तक पर्याप्त पहुंच नहीं मिल पाती। अंत्योदय हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि विकास की योजनाएं बनाते समय केवल औसत व्यक्ति को ध्यान में रखना पर्याप्त नहीं है। ये देखना भी जरूरी है कि जो व्यक्ति सबसे पीछे है वो उस विकास से कितना लाभ उठा पा रहा है। यही बात हमें लेकर जाती है समावेशी विकास की ओर। समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का अर्थ है ऐसा विकास जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भाग लेने और उसका लाभ पाने के अवसर होते हैं। इसमें केवल आर्थिक विकास की गति महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि ये भी देखा जाता है कि उस विकास के अवसर पर अवसर कितने व्यापक हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी क्षेत्र में उद्योग आते हैं और रोजगार बढ़ता है तो आर्थिक विकास है, लेकिन अगर स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलते हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, छोटे व्यवसायों को बाजार मिलते हैं और कमजोर वर्गों तक भी सुविधाएं पहुंचती हैं तो विकास अधिक समावेशी रूप लेता है। इसी तरह डिजिटल तकनीक को ही ले, आज मोबाइल फोन और इंटरनेट ने बैंकिंग, शिक्षा, सरकारी सेवाओं और व्यापार के नए रास्ते खोले हैं, लेकिन अगर किसी दूर दराज के गांव में इंटरनेट की सुविधा ही कमजोर है, किसी परिवार के पास स्मार्टफोन नहीं या कोई व्यक्ति डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करना नहीं जानता तो केवल डिजिटल सुविधा उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं होगा। समावेशी विकास का अर्थ है सुविधा के साथ उस सुविधा तक पहुंचने की क्षमता भी सुनिश्चित करना। शिक्षा इसका एक बड़ा उदाहरण है। किसी बच्चे के पास स्कूल होना जरूरी है लेकिन केवल स्कूल की इमारत होना पर्याप्त नहीं, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों की उपलब्धता, किताबें, डिजिटल संसाधन और सुरक्षित वातावरण भी चाहिए। अगर आर्थिक स्थिति के कारण कोई बच्चा शिक्षा से बाहर रह जाता है तो विकास की प्रक्रिया

0: व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सा पीछे छोड़ जाता है। अंत्योदय की अवधारणा में अवसर शब्द का बहुत महत्व है। किसी व्यक्ति को केवल सहायता देना, उसे आत्मनिर्भर बनाने का अवसर देना, इन दोनों में अंतर है। लंबे समय के विकास के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी छोटे गांव में रहने वाला युवा अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है। यदि उसे प्रशिक्षण, डिजिटल जानकारी, बाजार तक पहुंच और वित्तीय सेवाओं की जानकारी मिलती है तो केवल किसी सहायता का लाभार्थी नहीं बनता बल्कि आर्थिक गतिविधि का सक्रिय भागीदार भी बन सकता है। यही समावेशी विकास का उद्देश्य है, लोगों को विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनना। इसी तरह महिलाओं की भागीदारी भी इसी में महत्वपूर्ण पहलू है। यदि किसी समाज में महिलाएं शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर अवसर प्राप्त करती हैं तो इसका लाभ केवल महिलाओं को नहीं बल्कि परिवार और व्यापक अर्थव्यवस्था को भी मिलता है। और इसी तरह दिव्यांगजन, बुजुर्ग और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सुविधा की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। किसी सार्वजनिक भवन में रैंप होना, डिजिटल सेवाओं का एक्सेसिबल होना, सार्वजनिक परिवहन में आवश्यक सुविधाएं होना, ये छोटी बातें लग सकती है लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए ये स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने की शर्त भी बन सकती है। अब जरा अंत्योदय को ग्रामीण भारत के संदर्भ में देखें। भारत की बड़ी आबादी लंबे समय से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार के अवसरों का विस्तार समावेशी विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ केवल सुविधा उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए किसान के पास खेती की जमीन है लेकिन अगर उसे बाजार की जानकारी, भंडारण की सुविधा, उचित परिवहन या आधुनिक तकनीक तक पहुंच नहीं तो उसकी आर्थिक क्षमता पूरी तरह सामने नहीं आ पाएगी। इसीलिए अंत्योदय की सोच हमें समस्या को केवल एक स्तर पर देखने के बजाय पूरे संदर्भ में देखने की प्रेरणा देती है। अब सवाल ये है कि अंत्योदय और समावेशी विकास आज के समय में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आर्थिक विकास के साथ समाज की आवश्यकताएं भी बदल रही है। आज विकास का मतलब केवल रोजगार, आय नहीं रह गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी, कौशल, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेश, स्वच्छ वातावरण और सामाजिक सुरक्षा भी जीवन की गुणवत्ता का हिस्सा है। इसीलिए किसी देश की प्रगति को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि विकास का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक किस सीमा तक पहुंच रहा है। यहाँ वित्तीय समावेश का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। बैंक खाता, डिजिटल भुगतान, बीमा, पेंशन और ऋण जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच किसी व्यक्ति को आर्थिक व्यवस्था से जोड़ सकती है लेकिन इसके साथ वित्तीय साक्षरता भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बैंक खाता तो खोल ले लेकिन डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के तरीके न जानता हो तो उसका वित्तीय समावेश अधूरा बन सकता है। इसीलिए समावेशी विकास में सुविधा, पहुंच और जागरूकता तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अंत्योदय की भावना बड़े स्तर की योजनाओं के साथ साथ छोटे छोटे सामाजिक प्रयासों में भी दिखाई दे सकती है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि समावेशी विकास कोई एक दिन में पूरा होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए लगातार प्रयास, सही नीतियां, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, स्थानीय जरूरतों की समझ, ये निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है कि विकास का लाभ किन लोगों तक पहुंच रहा है और कौन अभी भी पीछे छूट रहे हैं। तो दोस्तों, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस इसलिए केवल एक स्मरण दिवस नहीं बल्कि विकास की हमारी प्राथमिकताओं पर विचार करने का अवसर भी है। हम अपने आसपास देखें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या हमारे विकास में प्रक्रिया का कोई ऐसा व्यक्ति या वर्ग है जो अभी भी पीछे छूटा है? अगर जवाब हाँ है तो अगला सवाल होना चाहिए, उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? यही प्रश्न अंत्योदय की भावना को जीवित रखता है। तो आप सुन रहे थे वार्ता और वार्ता के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे अंत्योदय की अवधारणा और समावेशी विकास पर। मिलते हैं थोड़ी ही देर में गुलगुलशन के साथ।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। विकसित भारतस्य संकल्पाय सर्वजन सहभागिता अनतिक्रमणीया इति सेवा संकल्पाभियाने सेवायात्रिभिः सह संभाषणावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रख्यापितम्। दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजनया 70,000 युवकानां प्रशिक्षणाय प्रशासनेन व्यधायी निर्णयः। IBSA मंचे पहलगाम आक्रमणस्य तीव्र निंदा। आतंकवाद उन्मूलनाय दृढ़ संकल्पश्च प्रकटितः। गभीर अवपातेन ओडिशा आंध्र तेलंगाना राज्येषु अतिवृष्ट्या महती क्षतिः आपादिता। ऋतु विज्ञान विभागस्य उच्च सतर्कता च वर्तते। अपि च नागोया एशियाई क्रीडासु 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धायां भारतस्य कमलजीत सुरुचि युग्मेन स्वर्ण पदकं प्रासाधि। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सर्वेषां सहभागित्वेन योगदानेन चैव विकसितं भारतम् इति संकल्पः सिद्ध्येत्। सेवा संकल्प अभियानान्तर्गतं काशीतः वडनगरं यावत् प्रस्थिताभिः सेवायात्राभिः सह आभासीय संवादे प्रधानमंत्री मोदी एतद् उदघोषयत्। वडनगरं मह्यं जीवनस्य आधारभूतान् संस्कारान् अयच्छत्। काशी च तेषु संस्कारेषु सेवानुरागस्य अनन्तान् वर्णान् समवयत् इति श्रीमोदी प्रत्यपादयत्। युवानः अपि अनेकैः सेवावर्णैः एतां यात्रां भूषयन्ति इति सः परं संतोषं प्राकटयत्।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: विगतेषु द्वादश वर्षेषु भारते नगर ग्रामयोः पारंपरिकं वैषम्यं भूयसा ह्रासम गच्छत् इति प्रधानमन्त्रिणा संकेतितम्। अद्यत्वे ग्रामेषु आधारभूत तन्त्राणां महती समृद्धिः अभवत्। राष्ट्रस्य नारीणां स्वावलम्बनम् अपि उत्कर्षं प्राप। संवादावधौ यात्रिणः स्वकीयान् अनुभूति संचयान् प्रधानमन्त्रिणः पुरतं न्यवेदयन्। प्रधानमन्त्री अपि यात्रिणः दैनन्दिन्यां स्वकीयान् यात्रानुभवान् समालेखितुम् अभ्यप्रार्थयत्। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजनायाः प्रत्यग्रे संस्करणे आगामी मासादारभ्य विविध राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 70,000 ग्रामीण युवानः वृत्ति कौशल शिक्षणेन अनुग्रहीष्यन्ते। केन्द्र प्रशासन पोषित प्राधान्या एषा योजना निर्धन ग्रामीण युवकानां आजीविका सम्बद्धं कौशल संवर्धनं विधातुं सन्नद्धा वर्तते। प्रशिक्षणस्यास्य समयावधिः त्रिमासात् आरभ्य 12 मासावधिः निर्धारिता अस्ति। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन उदीरितं यत् अस्मिन् अभियाने सम्बद्धेभ्यः 31 राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च आगामी वर्षद्वयस्य चक्राय 9,00,000 युवकेभ्यः प्रशिक्षण संवर्धनस्य बृहत् लक्ष्यं समर्पितम्। मेक इन इंडिया भारतवर्षे निर्माणम् इत्यस्याः राष्ट्रियनीतेः 12 वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्याः ऐतिहासिकं साफल्यं सप्रश्रयं रेखाङ्कितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशं ददत् श्रीमोदी अकथयत् यत् अनया नीत्या देशे स्वदेशीया उत्पादकता सुदृढा अभवत्, वैदेशिक निवेशस्य वर्धनं च जातम्, भारतस्य निर्यातः च नूतनाम् उन्नतिम् अस्पृशत्। एषः क्रान्तिकारी परिवर्तनप्रवाहः सम्प्रति देशस्य सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु प्रत्यक्षं दृश्यते। प्रधानमन्त्रिणा उदीरितं यत् मेक इन इण्डिया केवलं निर्माणकार्यं नैवास्ति, प्रत्युत एतत् तादृशस्य आधारभूततन्त्रस्य, उद्यमशीलतायाः, नवोन्मेषस्य च सृजनमस्ति, येन भारतवर्षम् अविरतं समृद्धिपथि अग्रेसरं भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः उपवेशने न्यूयॉर्क नगरे IBSA इति मञ्चस्य अन्तर्गतम् आयोजितायां मन्त्रिस्तरीय गोष्ठ्यां भारतस्य विदेश कार्यमंत्री डॉ एस जयशंकरः, दक्षिण अफ्रीकायाः विदेश मंत्री रोनाल्ड लोमोला, ब्राजील देशस्य विदेशमंत्री मौरो वियरा च सम्भूय पहलगाम नगरे संजातस्य आतंकवादी आक्रमणस्य तीव्रं भर्त्सनम् अकुर्वन्। आतंकवादं प्रति निरपेक्ष असहनशीलताम् इति स्वकीयं दृढं संकल्पं च पुनः एते उपस्थापयन्। त्रिभिः अपि मन्त्रिभिः संयुक्त राष्ट्रस्य नियमपत्रस्य अन्ताराष्ट्रिय विधि संहितायाः सुदृढ बहुपक्षीय व्यवस्थायाः च प्रति स्वकीया प्रतिबद्धता प्रदर्शिता। एकस्मिन् संयुक्त विज्ञापने IBSA नेतारः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः व्यापक परिष्कारस्य आह्वानम् अकुर्वन्, येन एषा संस्था समकालीन यथार्थतायाः प्रतिनिधित्वं कुर्वाणा अधिकं लोकतांत्रिक प्रभाविणी च भवेत्। अत्रावधेयं यत् तैः जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां त्वरित समाधानाय नवीकरणीय ऊर्जायाः प्रसाराय सांगणकीय संपर्क संवर्धनाय अथ आर्थिक समृद्ध्यै कृत्रिम प्रज्ञायाः समुचित उपयोगाय विशेषं बलं प्रदत्तम्। वैश्विक अनिश्चिततासु सत्यपि भारतेन 17.8% विकासं संप्राप्य तीव्रतम वर्धमान अर्थव्यवस्थायाः स्थानं सुरक्षितम् इति ग्रेटर नोएडा नगरे उत्तर प्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मेलायाः उद्घाटनावधौ गृहमंत्री अमित शाहः उदघोषयत्। सः अवदत् यत् मूडीज इति संस्थया भारतस्य विकास पूर्वानुमानं प्रवर्धितम्, JCR संस्थया च देशस्य सार्वभौम मानांकनं समुन्नतम्।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 trillion की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं, दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन अद्य नवदिल्ल्यां प्रभावी वन प्रबन्धनार्थं क्षमता संवर्धन परियोजना इत्याख्यायाः कार्यशालायाः विधिवत् शुभारम्भो विहितः। अत्रावसरे मन्त्री न्यरूपयत् यत् इयं परियोजना वनाग्नि प्रबन्धने जैव विविधता संरक्षणे अथ जलवायु कार्यान्वयने प्राविधिक क्षेत्रीय दक्षतानां संवर्धनाय महतीं संभावनां धारयति। दक्षिण छत्तीसगढ़ प्रांते तटसन्निकटे दक्षिण ओडिशा प्रांते च संजातस्य न्यून वायुपीड मंडलस्य प्रभावतः अद्य भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन तयोः राज्ययोः कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः अत्यंत भीषण वृष्टेः च संभावनां प्रकटय्य रक्तवर्णीया संचेतना प्रकटिता। अपरञ्च एतद् वायुपीडमण्डलम् आगामिषु 12 होरासु शिथिलं भूत्वा सामान्यानां न्यूनवायुपीडसीमायां परिणश्यति इति विभागाधिकारिभिः निगदितम्। अद्य जापानदेशस्य एचिनागोयानगरे एशिया प्रतिस्पर्धायां महिलानां शॉट्पुट स्पर्धायां भारतीय क्रीडिका मनप्रीत कौर कांस्य पदकम् अवाप्तवती। इति वार्ताः।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 6:30 का, यानी कि अभी समय है खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता गुलगुलशन का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आतिफ असलम ज्योति का टांगरी के इस गाने से जो है फिल्म लैला मजनू से।

दोस्तों इस गाने पर बस एक शायरी याद आ गई कि चंद लम्हों की खुशी हासिल कर भी लो तो क्या हासिल किया, चंद लम्हों की खुशी हासिल कर भी लो तो क्या हासिल किया, जीना है तो मेरे होने के एहसास को जियो वरना तुम्हारी यादें मेरे अकेलेपन का कत्ल कर देंगी। ये था पहला गीत ओ मेरी लैला, फिल्म लैला मजनू से आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे हमारा अगला गीत जो है आजा नचले से राहत फतेह अली खान की आवाज़।

0: पर उससे पहले एक विशेष सूचना देना चाहूंगी। अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसबी मंडल की डाक अदालत का आयोजन 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल कार्यालय 2MG रोड हावड़ा चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर हावड़ा 7111101 में गूगल मीट यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएस एसबी मंडल से संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल यानी कि ईमेल आईडी rmssbdn@gmail.com ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखे। उसके माध्यम से अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल हावड़ा 7111101 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपने ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहक को शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या 0332641594 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस वीसी का लिंक यथासमय साझा कर दिया जाएगा और ये जान ले कि कानूनी मामलों जैसे उत्तराधिकारी और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। तो इसी के साथ ये सूचना समाप्त होती है और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं एक और विशेष सूचना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

अब कार्यक्रम गुलगुलशन में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक और विशेष सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह्न 12:30 पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों के पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावों से संबंधित शिकायतों और का निपटान लिया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकरणियों से पूर्व प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्व ब्यूरो का उल्लेख आवश्यक होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in, adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212052 0332212062

0: 0333-221-2050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखना होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार भी नहीं किया जाएगा। तो सूचना समाप्त होती है और आगे बढ़ते हुए हमारी अगली सूचना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों चलते चलते कार्यक्रम के आखिरी गीत तक हम पहुंच चुके हैं, जो है अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में सत्य प्रेम की कथा से पसोरीनो। और इस गाने के साथ ही मैं पापिया भी लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलूंगी ठीक 7:45 पर आज कार्यक्रम दर्पण के साथ। अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यूं ही मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। थोड़ी देर में अगला प्रोग्राम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने

0: प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने, मैनग्रोव संरक्षण तथा आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं फरहत नाज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का भारत युवा भारत है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, सपने पूरे करने वाला है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मैदानों की जहां भारत दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। एक है खेल का मैदान और दूसरा है अंतरिक्ष का मैदान। जी हां, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, इसरो के पूर्व निदेशक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को सच होते हुए देखा है, डॉक्टर प्रमोद काले जी। नमस्कार प्रमोद जी।

0: जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा और मंगलयान हमने पहली ही कोशिश में बहुत कम बजट में कर दिखाया। ये यात्रा युवाओं को क्या सिखाती है?
1: जो भी कुछ सपने होते हैं वो सच होने के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं और तरक्की जब हमारे देश ने जो की है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है।
0: जी,
1: एक तो जब हमने शुरुआत की हमारे सब टीम भी बहुत ही छोटी थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सपने बड़े थे और आगे जाके क्या करना है इसका हमें पूरी तरह से ख्याल था।
0: जी सर,
1: चंद्रयान 3 जब चंद्र पर जाके उतरा अच्छी तरह से, उसमें से एक रोवर भी निकला, प्रज्ञान रोवर भी निकला, तब मैं तो सिर्फ टेलीविजन पे देख रहा था यहाँ घर बैठे, और तब मैं सोचता था कि इतने सालों में जो काम किया उसकी सफलता देखने को मिली है।
0: तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राजा रमन जी आपके पास चलते हैं, खेल की बात करते हैं। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज कहा जा रहा है जो खेलेगा वही खिलेगा। तो ये बदलाव कैसे आया?
2: खेलोगे तो बनोगे लाजवाब, ये भी बोलने लग गए। अच्छी बात है कि 2014 के बाद एक सोच में बदलाव आया है, युवाओं में एक भरोसा आ गया है कि अगर हम खेलते हैं तो हमारा निजी जीवन बहुत बढ़िया चल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप एथलीट्स के लिए बहुत है और युवाओं में एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हो गया। पहले नहीं था, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये समझ आ गया कि देश उनका बहुत इज्जत करता है, देश के नेता उनको बहुत इज्जत करते हैं और इतना सम्मान और प्यार शायद खिलाड़ी को पहले कभी नहीं मिला।
0: सर ये बताइए आप कि सरकार खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, खेल महाकुंभ, फिट इंडिया और नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसी कई योजनाएं लेकर आई है और इनसे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या गांव के बच्चों को भी अब ओलंपिक का सपना देखने का मौका मिल रहा है?
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, ये कहा कि 5 से 15 साल के बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और फिर 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए हम तैयारी करेंगे, अब से शुरू करेंगे। ये सोच बहुत अच्छी सोच है, पहले भी होता था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अभी एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा है और युवाओं को ये समझ आया है कि खेलने से इंसान की सेहत बनती है और शायद भविष्य भी बन जाती है।
0: बिल्कुल। और अब हम प्रमोद जी के पास वापस लौटते हैं और चांद की बात कर लेते हैं कि आज हम चांद से आगे निकल गए हैं, आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है और 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
1: बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। आदित्य जो है वह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, लेकिन सूरज की जो स्टडी करनी है तो उसके लिए वहां जाकर ही करनी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक हम सूरज को देख सकते हैं। अभी अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो हम भेज सकेंगे अगले साल के अंतरिक्ष में, तो वो बता सकेगा, वो प्रयत्न जो होगा वो हमें बता सकेगा कि ये भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है वो अच्छी तरह से चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजना है, और वो अगर कर सकेंगे तो हम उसके आगे जाकर बहुत ही काम करना है। अभी चंद्रयान 4 का भी काम चल रहा है और भी एक लैंडर जो है जापानीज एजेंसी के साथ उनका जो काम चल रहा है उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो युवा जो है उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले तो क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी जो मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स की जो बात आ गई, तो स्पोर्ट्स और उसका जो संबंध जो है वो मुझे तो पहले तरह से ही पता है, क्योंकि जब नासा ने पहला उनका सैटेलाइट सिनकॉम 3 1963 में भेजा था, उसका उपयोग 1964 साल के टोक्यो ओलंपिक्स वो अमेरिका में लाइव देख सके
0: जी।
1: और उसके बाद जो प्रगति हुई, जो हमने देखा कि 1982 में INSAT-1 का हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल रहा, लेकिन दूरदर्शन ने रशियन सैटेलाइट स्टेशनर का उपयोग करके पूरे एशियाड गेम्स सब जगह पे दिखा सके और एशियन गेम्स जापान में चल रहे वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। ये कैसे होता है? तो इसके लिए जो दूरदर्शन की जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ऑल इंडिया रेडियो की ट्रांसमिशन सिस्टम है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमारे उपग्रह है, जो उपग्रह का उपयोग करके हम ये सब काम कर सकते हैं।
0: जी, तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, जब एक अंतरिक्ष का जो शख्स है वो खेल की बात करता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि खेल में भी एक सेकंड की चूक मेडल छीन लेती है और अंतरिक्ष में ठीक वैसी एक सेकंड की चूक मिशन फेल कर देती है। तो दोनों में मुझे लगता है अनुशासन और फोकस बहुत जरूरी है। तो राजा रमन जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा अनुशासन चाहिए?
2: बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है और ग्लोबल सुपर पावर बनना है स्पोर्ट में, जैसे मुझे लगता है डॉक्टर कले

0: और ऐसे लीडर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे ले चुके हैं. वहां आप देखिए, एक बार हम शायद 500 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं. ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले. ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता था कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा, गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आया था. एक महिला हमारी एक ही ओलंपिक गेम में दो मेडल हासिल कर सकती है, मनु बाकर की बात कर रहा हूं मैं. ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन अब संभव हो गया है सब कुछ. अब हमारी सोच शायद छोटी थी, अब सोच को विस्तार करने का एक मौका मिला है और फिर उस सोच को आगे चल के प्लान में और एक्शन में बदलने का एक मौका मिला है भारत को. और हमारी युवा पीढ़ी शायद वो अनुशासन दिखाने लगी है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो या शूटिंग हो या कुश्ती हो या मुक्केबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो. ऐसे खेलों में हम बहुत ज्यादा अनुशासन दिखा रहे हैं, खास करके हमारे टॉप एथलीट.
1: राजीव रमन जी, पहले दिव्यांग बच्चों की जब बात आती थी तो अक्सर लोग निराश हो जाते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में दिव्यांग बच्चे ही खेलों में आगे बढ़ रहे हैं.
0: वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दीपा मलिक की बात कीजिए, पहली ऐसी महिला बनी भारत से जो पैरालंपिक गेम्स में मेडल हासिल की है. और कई ऐसे एथलीट हैं, शीतल देवी की जितनी तारीफ की जाए कम, उनके हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीर चलाती है और फिर विश्व में बहुत ही विख्यात पाई है, शी इज वेरी फेमस एथलीट. ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं जो बाकियों का हौसला अफजाई करते हैं. पहले होता था जब हम विकलांग को देखते थे तो तरस का एक सोच आता था, अब तरस नहीं समझ की बात होने लगी है. ये बदलाव अभी देखने को मिला है पिछले 10-12 साल में. और हमारे खिलाड़ी, विकलांग खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट जो खेलते हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और फिर बाकियों को भी प्रोत्साहित करते हैं.
1: बिल्कुल राजा रमन जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम गगनयान मिशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट सुन लेते हैं.
2: श्रोताओं, आज का युवा सिर्फ खेल के मैदान में ही देश का नाम रोशन नहीं कर रहा है, बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है. आज हम बात करेंगे भारत के गगनयान मिशन की. गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और लगभग 3 दिन के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है. लेकिन श्रोताओं, इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं है. इसके लिए रॉकेट, अंतरिक्ष यान, जीवन रक्षक प्रणाली, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था जैसी कई तकनीकों का विकास करना पड़ता है. भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट HLV-M3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है. इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी से जुड़ी डिक्लेरेशन सिस्टम की जांच के लिए 2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं. अब गगनयान कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहा है. गगनयान का पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है. इस मिशन में व्योमित्रा यानी एक हाफ ह्यूमेनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा. इसका उद्देश्य उन तकनीकों की जांच करना है जिनकी आवश्यकता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए होगी. इसके बाद 2 और अनक्रूड मिशन की योजना है और मानव मिशन को 2027 के लिए लक्षित किया गया है. श्रोताओं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश में कई नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों का रास्ता भी खोलता है. अंतरिक्ष यान बनाने से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, संचार और दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है और यही वजह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है. इसका एक उदाहरण युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है. 2026 में युविका कार्यक्रम में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 456 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया. इन विद्यार्थियों को इसरो के 9 केंद्रों पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दी गई. उन्हें वैज्ञानिकों और गगन यात्री से बातचीत, रॉकेट लॉन्च देखने, रोबोटिक्स, चंद्रयान 3 DIY किट और मॉडल रॉकेट जैसे व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए. श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं है. देश भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है. भारत की योजना लगभग 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है. इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है. यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है. खेल के मैदान में युवा अनुशासन, मेहनत और टीम भावना से देश को गौरवान्वित करता है। वहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा अपनी जिज्ञासा, ज्ञान और तकनीकी क्षमता से देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर केवल एक विचार नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने की दिशा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में आज के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और विद्यार्थी आने वाले भारत की नई कहानी लिख सकते हैं।
1: तो अब हम वापस लौटते हैं प्रमोद जी के पास। और प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मिशन फेल हुए, जैसे चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग, तो उस रात इसरो में क्या माहौल था और फेल होना भी युवाओं के लिए क्या सबक है?
3: एक तो जब हम हाथ से काम लेते हैं तो पहले से पता होता है कि कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका अभ्यास करके इसमें क्या सुझाव करना पड़ेगा। तो ये सोच रख के हम काम करते हैं कि कुछ भी दो फेल हो जाए तो ठीक है, हम आगे जाके इसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जब मिशन होता है, इतनी बड़ी टीम जब काम करती है, कभी कुछ गलत हो सकता है, और जो गलत हो जाए तो आगे जाके उसको ठीक करके हम फिर से दोबारा ऐसा ही प्रयत्न करेंगे। ये भावना मन में रख के ही हम आगे काम करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो मैंने देखा है कि टीम स्पिरिट जो होना चाहिए, वही टीम स्पिरिट ये स्पेस के हमारे काम में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: प्रमोद जी, आप ये बताइएगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन अब स्टार्टअप्स की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनियों की, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इस बदलाव के सबसे बड़े अवसर और चुनौतियां क्या हैं?
3: पहले से ही हम देख रहे थे कि जब हमने काम खत्म लिया था तो सभी जो काम है वो पूरा काम इसरो में ही हो सकता नहीं है। जब इसरो ने काम चालू किया SLV-3 लॉन्च व्हीकल के लिए, तब ध्यान में आया था कि इसके लिए जो काम है उसको इंडस्ट्री में ही करना चाहिए, जो बड़ा काम करना है वो। और तभी से 40 साल हो गए, अभी सभी इंडस्ट्रीज हमें उसके साथ मदद करती। आज जो देखे तो मुझे लगता है कि 75% काम जो है वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री में हो रहा है। और अगर जो ये इंडस्ट्री आगे जाकर ये काम खुद अपने ही हाथ से करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो काम करना है तो वो इसरो कर सकती है। और लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है, वो जो हमारे अभी के जो छोटे जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नहीं तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो इंडस्ट्री में जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये स्टार्टअप ने हमें दिखा दिया है, स्काई रूट का जो Vikram-1 जो उन्होंने लॉन्च किया
1: जी,
3: बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है। और ये काम और आगे जाकर वो कर सके पूरी तरह से, उसके लिए जो ईंधन लगा था वो इसरो में ही बना था। तो जो काम इंडस्ट्री कर सके इसरो के बाहर, वो जो अपने हाथ में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस काम में नए इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
1: और अब राजा रमन जी, आपके पास वापस लौटते हैं, हम बात करते हैं फिट इंडिया की। तो फिट इंडिया सिर्फ एक नारा है या लोगों की आदत वाकई में इससे बदली है?
0: इससे पहले मैं डॉक्टर काले ने जो बात कही है हारने की और जीतने की, वहां से सीख लेने की, ये आपको खेल के मैदान में देखने को मिलता है फरज जी, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप ज्यादा हारते हैं और हार से जो सीख मिलता है वो शायद जीत में नहीं मिलता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग खेलें और सीख लें कि आज हार भी जाए तो अपने आप को कैसे उठाएं, और इसरो ने वो कर दिखाया है।
1: हाँ, और पुरानी कहावत भी है, हार में ही जीत है।
0: बिल्कुल है। और अगर हम फिट इंडिया की अभी बात करते हैं, हाँ, तो फिट इंडिया एक सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया, अभी लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को समझाने का कि अपना सेहत बना के रखो। और सेहत बनाने का एक तरीका है खेल, और आधा घंटा अगर आप खेलते रहेंगे दिन में तो आपकी सेहत बन सकती है। एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है भारत के सामने, जहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे शायद हमको सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने सोचा है कि फिट इंडिया एक ऐसा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझ आएगा और लोग अपने आप ही और अपने सेहत बेटर करने की ओर चल पड़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्लोगन नहीं हमको मिशन मानना चाहिए।
1: जी अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, जैसे उत्तर पूर्व हो गया या हरियाणा, ये छोटे राज्य हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडल यहीं से आते हैं, तो इसका क्या राज?
0: इसके वहाँ के लोगों के अंदर एक शायद भूख है, जो छोटे शहरों में, सिर्फ इन प्रांतों की नहीं बात करता, आप पूरे देश में देखिए, जो छोटे शहर से आते हैं या गांव से जो आते हैं खिलाड़ी, उनके अंदर एक भूख होता है, कुछ कर दिखाने का मादा होता है और वो कर दिखाते हैं। शायद थोड़ा अगर एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाता तो खिलाड़ी और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि जो खिलाड़ी आए हैं और जो भारत का नाम रोशन किए हैं उन सब में एक ही बात है कि उनके अंदर एक भूख है, हुनर तो है ही, हुनर चाहिए, उसके साथ कोशिश भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अंदर भूख है।

0: वो कुछ करना चाहते हैं और फिर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने गांव को सुधारना चाहते हैं।
1: जी अच्छा प्रमोद जी, मैंने कुछ समय पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि चेन्नई के दो युवाओं ने, अग्निकुल और हैदराबाद के युवाओं ने स्काई रूट बनाया, तो इसरो इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा है?
2: उसकी टेस्टिंग के लिए और उसका जो ईंधन जो है वो ईंधन इसरो ने दिया था, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं वो
1: जी।
2: और जब उसको लॉन्च किया विक्रम 1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया था। जो भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है और जो काम वो कर रहे हैं उसे और भी ज्यादा तरीके से, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन भारत में 3-4 जगह से इस तरीके से काम होने की जरूरत है।
1: तो अगर हम आज से 20 साल आगे भारत के स्पेस प्रोग्राम की कल्पना करें तो आप भारत को कहाँ देखना चाहेंगे?
2: चंद्रमा पे जाकर वहाँ से अच्छी तरह से वापस आना, ये महत्वपूर्ण बात होगी।
1: वापस आना और वापस आकर मुझे लगता है खेल जगत की दुनिया में दोबारा चलना। राजरमन जी,
0: 20 साल की अगर बात करें तो अगर हम ओलंपिक के टॉप 10 देशों में हो जाए तो मेरे लिए बहुत सुनहरा सपना साकार हो जाएगा। अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा खेल की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग बढ़ते हैं और जो शिक्षक है वो और थोड़ा मेहनत करते हैं, सिर्फ 10-12 खिलाड़ी में नहीं फोकस करके 400-500 खिलाड़ी में फोकस करें, उनमें से चैंपियन पैदा करें शिक्षक जो कोचेस है, अगर वो हो जाता है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी थोड़ा सा सोच में हमारा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन चाहे लिएंडर पेस हो या अभिनव बिंद्रा हो या राज्यवर्धन राठौर हो या मनु बाकर हो या नीरज चोपड़ा हो, इन लोगों ने उस सोच में बदलाव लाने का बहुत बहुत योगदान दिया है।
1: तो राजरमन जी, 2036 की अगर बात की जाए, हम आगे ओलंपिक भारत में लाने की बात हो रही है, तो अगर ओलंपिक भारत में हुआ तो इससे युवा शक्ति को क्या फायदा हो?
0: एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और कईयों को नौकरी लग सकती है। हम समझते हैं कि खेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन आप देखिए एक पूरा इंडस्ट्री बनता है खेल के इर्द गिर्द, चाहे वो टूरिज्म हो या लेबर फोर्स हो, जो स्टेडियम बनाने का लेबर फोर्स हो, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं इसमें और युवाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। खिलाड़ी के लिए तो है ही, लेकिन और भी युवा जुड़ सकते हैं खेल के माध्यम से और उनका भला हो जाएगा।
1: और अब वापस लौटते हैं और अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का भविष्य है अंतरिक्ष में आगे के लिए, प्रमोद जी क्या होना चाहिए?
2: जहाँ भी वो सीखते हैं ये बच्चे, उनको पहले से ही थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले कि छोटा रॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं, छोटा सैटेलाइट किस तरीके से बना सकते हैं और उसमें जो टीम जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है। मैंने यहाँ पुणे में देखा था, एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूरा प्रयत्न करके एक उपग्रह बनाया जिसका नाम था स्वयं। और रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ आया पुणे में तो मैंने उनको मदद की थी और मैंने देखा कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी ये काम वो कर दिखा सकते हैं। वो टीम जो पहले थी वो अंत तक नहीं रही थी क्योंकि ये तो स्टूडेंट थे, उनके 3-4 साल पूरे होने के बाद वो कॉलेज छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मगर ये कॉलेज ने करके दिखाया था। और इस तरीके से का काम जो है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है, ये ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बड़े दूसरे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पहले से इस तरीके के काम के लिए उनके जो विद्यार्थी है उनको तैयार करना चाहिए।
1: प्रमोद जी, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, इस किसी चीज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं, लेकिन जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सफर शुरू हुआ था तब सीमित संसाधनों से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने भारत को एक शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम से आज एक सक्षम अंतरिक्ष शक्ति बनने तक पहुंचाया?
2: एक तो पहले हम जब काम करते थे तो पहले 3-4 साल तक जो रॉकेट्स थे वो रॉकेट्स अमेरिका से, फ्रांस से आए थे। उसके बाद में जब हमने अपना खुद का ईंधन जो है वो तैयार किया, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार हुआ, तो वो प्रोपेलेंट जो है उसी के लेकर हम आगे जाकर काम कर सके। उसके बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में काम किया, उसके बाद में जाकर क्रायोजेनिक्स में भी काम किया। तो ये जो आत्मनिर्भर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिर्फ कोई इंटरनेट से जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें से कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन ये आगे जाकर ये हमें खुद को करना पड़ता है और ये जो खुद को करना पड़ता है ये देखकर हम आगे चले गए हैं।
1: खुद को देखकर करना पड़ता है राजनमन जी। तो अगर आप खेल की हम बात करें तो इसमें भी हम वही चीज अपनाना चाहेंगे कि सीमित संसाधन उस समय हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से, कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे आने का मौका देती हैं, तो ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है आपने। हाल ही में मेरी बात हो रही थी कुछ शूटर्स के साथ जो निशानेबाज है, राइफल शूटर्स, उनको एक बॉडी आर्मर सूट पहनना होता है, वो सूट पहले आप इंपोर्ट करते थे, अभी भारत में जो बनता है वही दुनिया भर में चलता है। तो भारत में काम शुरू हो गया है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है या आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेल में भी आ गया ये। और ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी आपको अभी समझ में आया कि विदेश में ही नहीं ट्रेन करते हैं, हमारे पास पटियाला में हो या बेंगलोर में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वहां पे भी ट्रेनिंग करके आप विश्व में चैंपियन बन सकते हैं। और ये दिखाया है कि आपके पास अभी सारे संसाधन है, आपकी तैयारी अगर सही हो तो आप विश्व में जाके एकदम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ।
1: तो एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं के लिए क्या चीजें की जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए।
0: 1970 में कमलजीत संधु पहली ऐसी महिला बनी जो एशियन गेम का गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए, और आज बहुत माहौल बदल गया है और हमें ये समझ आया है, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया है कि हमारे महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत सारे पदक हासिल करते हैं, एशियन गेम में हो या राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, यहाँ पे हमारे महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो एक कोशिश ये है, अगर आप खेलो इंडिया की बात करें उसके अंदर अस्मिता लीग करके एक शुरू हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये हमारे समझ में आया है कि महिला हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बना है अस्मिता, वहां से खेलो इंडिया में चलते हैं, खेलो इंडिया से फिर टॉप्स में आते हैं, बहुत सारे अभी रास्ते खुले हैं हमारे महिलाओं के लिए और एक इज्जत मिलने लगा है सोसाइटी में जब वो खेलते हैं और फिर भारत का नाम रोशन करते हैं, दे आर रेस्पेक्टेड अ लॉट मोर, पहले जैसा नहीं, लेकिन अच्छी बातें हो रही है भारत के अंदर और मुझे लगता है कि महिला ही हमें बहुत आगे और लेके जाएंगे।
1: अगर खेल की हम बात करते हैं तो उसमें डोपिंग और एज फ्रॉड जैसे मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, तो युवाओं का जो करियर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस चीज को कैसे रोका जाए?
0: डोपिंग के लिए कानून बना है और जब एथलीट डोप करता है या करती है तो एक 4 साल का बैन लग जाता है उनपे, लेकिन जो उन्हें कराते हैं उनको क्रिमिनलाइज करके अभी भारत सरकार एक कानून बनाई है, अगर कोई खिलाड़ी को जबरदस्ती डोपिंग की ओर लेके जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है। और ये अच्छी बात है, डोपिंग रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका है ये है कि सप्लाई चेन को आप काट दें, तो ये डोपिंग के मामले में वो सही हो गया है। एज फ्रॉड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है, अगर स्पोर्ट करप्शन की बात करें शायद डोपिंग से ज्यादा एज फ्रॉड है, और इसमें चाहिए जो पेरेंट्स है, जो स्कूल के अध्यापक है, जो कोचेस है, इनको चाहिए अनुशासित होना और फिर सोचना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो एज फ्रॉड नहीं करना है, अगर सही एज में खेलेंगे तो हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में भी अच्छा करने लगेंगे, अब सिर्फ जूनियर में करते हैं हम।
1: राजारमन जी, आपने अनुशासन की बात की तो प्रमोद जी से हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी चीज के लिए चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर खेल, अनुशासन बेहद जरूरी है, तो अगर बात की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई की या फिर डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम की, तो उनसे कौन सी ऐसी बात सीखने को मिली है कि जो आज के युवाओं को जानना होगा?
2: एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे टीचर थे, उनसे मैंने एक देखा था कि जब सुबह उठते हैं एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, कभी तीसरा, मगर पूरा दिन अच्छी तरह से काम करते रहते, उनका सब्जेक्ट चेंज करते थे, ये हमें सीखना मिला उनके पास से। और एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे साथ में काम करने के लिए आगे 1963 में, तो उसके बाद मैंने देखा था पहले ही जब हमारी मुलाकात हुई, बाकी सब इंजीनियर्स और 7-8 लोग हम थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज द ओनली एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, उनसे हमें बहुत सीखने को मिला कि उनका विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा विषय था कम्युनिकेशंस, जो भी कुछ हम करते थे उसी में रस लेते थे, हमारे साथ चर्चा करते थे। और आगे जाकर हम जब SLV का काम करना चालू कर दिया तो तब तक मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं, वो पहले से ही काम करते थे, पूरा रस लेके काम करते थे, पूरी जो उन्होंने टीम बनाई थी वो टीम के साथ वो किस तरीके से काम करते थे और कितनी शांतता पूर्वक, कितनी सभ्यता पूर्वक वो जो काम करते थे वो सीखने को मिला। तो जब आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो नए इंजीनियर से, नए साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री में काम करते हो या इसरो में काम करते हो, तो सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे टीम का काम है, कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये, और इसी लिए जो टीम स्पिरिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर देता है।
1: जी, टीम स्पिरिट मुझे लगता है बहुत जरूरी है राजारमन जी, हर चीज के लिए।
0: बिल्कुल है, और खेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें या फिर हॉकी टीम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी फरज जी आजकल टीम आ गया है, एक खिलाड़ी के साथ कोच है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका भी एक टीम बन गया है, युवाओं को भी समझ आया है कि वो भी अपना एक टीम बनाए, चाहे आप धावक हो, स्प्रिंटर हो, या मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, या फिर आप मुक्केबाज हो, आप सबको चाहिए टीम। और खेल दिखाता है जब आप मिलके करते हैं तो मुट्ठी बन जाते हैं और फिर ताकत अपने पास आती है। और खेल बहुत सारी सीख देती है सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप जितना

0: भी आप अच्छा कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर की बात है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और भारत रत्न भी हैं। उन्होंने सिखाया कि आप कितने भी बेहतर हो जाएं, और बेहतर ही हो सकती है, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव, हर रोज आप बेहतर हो सकते हैं। ये उनके रिटायरमेंट तक वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश में लगे रहे। परफेक्शन इज यूटोपियन, और वो दिखाए कि हर रोज मेहनत करने से आप थोड़ा और बेहतर हो सकते।
1: और अगर बात अब 2047 की करते हैं, तो हम आप दोनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि 2047 विकसित भारत के लिए आप लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए। जी प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताइए।
2: कि जब मैंने पहले पढ़ा था, गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और जो उन्होंने विलेज स्वराज के लिए जो बात की थी, वो सीखने के बाद मुझे ध्यान में आया है कि अगर जो हमें आगे जाकर कुछ करना होगा, तो ये एक अच्छी तरह से हमारा जो देश है उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो एजुकेशनल सिस्टम इतनी अच्छी तरह से बने कि सभी को पूरा ज्ञान मिल सके।
1: जी राजरमन जी,
0: कई साल तक हम बिजली पहुंचाते रहे, पानी पहुंचाते रहे गांव में, अब वो समय आ गया है कि अगर गांव में बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए तो देश का बढ़ावा हो जाएगा। और शायद विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना ये होगा कि हर बच्चा खेलने लगेगा और फिर हम अच्छे स्टार्स बनेंगे।
1: तो हमने जैसे जाना कि खेलो इंडिया का जो युवा पोडियम है, जब तिरंगा फहराता है वहां पर, और इसरो का युवा रॉकेट लॉन्च करता है, तो दोनों ही एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं, और वो है युवा शक्ति से विकसित भारत। तो प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति के बारे में?
2: ये युवा शक्ति जो है उसको जानना जरूरी है, वो क्या कर सकते हैं, वो जो हमें ध्यान में आ जाए तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारा काम और भी कर सकते हैं। उनको कहाँ जाना है इसकी थोड़ी तो उनको जो कल्पना हो, और वो कल्पना हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। ये पूरा सपोर्ट अगर जो उनको मिल जाए उनके टीचर्स के साथ, उनके फैमिलीज के साथ से, तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आगे जाकर जो भी कुछ स्पेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो पहले से ही उनको अच्छी तरह का गाइडेंस मिलना चाहिए। ये जो युवा शक्ति है उन्हें भी एक देखना है कि उनके रोल मॉडल्स क्या है और वो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो उनको कल्पना होनी चाहिए। ये जो प्रेरणा हो तो उनको बढ़ावा देकर उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।
1: प्रमोद जी, देखा जाए तो आजकल के युवा हैं उसमें डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज हार गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अनुभव से उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
2: हमने जब इनसेट वन लॉन्च किया था, तो लॉन्च करने के बाद एक थोड़े ही दिन में ध्यान में आ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने इनसेट वन बी का भी जो काम था उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान देकर काम किया। इतनी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी फेल्यूर्स हो जाते हैं और आगे जाकर हमें फिर से उठकर आगे दौड़ना है, यही मैं तो देखता हूँ। आपने डिप्रेशन की जो बात की, ये डिप्रेशन ज्यादा होता है आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर समय जो मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखते रहते हैं, और उनको ध्यान में आता है कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, दूसरे को ही कर पाते। तो ये जो डिप्रेशन की जो बात है, ये एजुकेशन में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हमारे काम में भी है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो उन्हें सेल्फ स्टडी का जो है वो करना चाहिए कि किस तरीके से ये अभ्यास करके अपने खुद को अच्छी तरह से आगे जाकर क्या कर सकते हैं, वो उनके ध्यान में आ जाएगा।
1: जी राजरमन जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
0: अगर डिप्रेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगता है कि ये आप किसी से बात कर ले, किसी से मदद मांगना कमजोरी का निशाना नहीं होता है। बहुत सही टाइम पे आप अगर मदद मांग लेते हैं तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। और एक और तरीका दूर करने का डिप्रेशन को, खेलना होता है। जब आप सुबह में आधा घंटा या शाम को आधा घंटा खेल लेते हैं तो आपके मन को एक शांति मिलती है, सेहत बनती है, फिर आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनका उम्र हो गया वो टहल सकते हैं, लेकिन युवाओं को खास करके ये कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ना जरूर, लेकिन साथ साथ खेलना भी, और दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा और डिप्रेशन नाम की चीज बहुत दूर रहेगी।
1: राजरमन जी, भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करी है। तो प्रतिभा की पहचान से लेकर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पहुंचने तक एक युवा खिलाड़ी को किस तरह की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है?
0: बहुत जरूरी है। पहले मुझे याद है फरज जी, मैं बहुत ही युवा था तब एक हेडलाइन आया था कि हमारे 700 मिलियन लोग हैं और एक भी पदक नहीं। 1976 ओलंपिक गेम्स में से हम खाली हाथ लौट के आए थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल बदला है। सवाल पूछते हैं कि कम मेडल क्यों आते हैं। कम मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी खेलते हैं, तो एक

0: टीम बना है, चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो। पिछले साल खेल मंत्रालय ने कुछ 2 लाख बच्चों के असेसमेंट्स किए हैं, हो सकता है वहां से कुछ निकल के आए। एक साइंटिफिक तरीके से जीन पूल को लेके टेस्टिंग हो रहा है, एक खोज में लगे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो देन वी विल फाइंड द क्लू के हम कौन से स्पोर्ट में और अच्छा कर सकते हैं। 7 या 8 खेल है जहां हम बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट अभी ओलंपिक में आया है, शतरंज में हम शानदार हमारे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे खेल हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की हमेशा बात होती है। वहां पे एथलेटिक्स में अभी हम वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, और खास करके शूटिंग हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, वहां से तो हमें अच्छे अंजाम आए हैं। लेकिन तैराक अगर कुछ मेडल लाते हैं या जिम्नास्टिक से कुछ मेडल आ जाते हैं तो भारत का भला हो सकता है। इसी का खोज शायद वो 5 से 15 की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो अगर सच हो जाता है, उसको हम सही तरीके से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स।
1: बिल्कुल, जो खेलेगा वही खिलेगा, मुझे लगता है अब ये बात बिल्कुल साकार हो गई है। तो श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि युवा शक्ति के लिए उनका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े।
2: मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ किसी का सुन के आगे नहीं जाओ, अपना खुद का सेल्फ स्टडी का एक रेजिम बनाए, और इस तरीके से जो भी कुछ उनके मन में हो, जो भी कुछ विषय उनको सीखना हो, तो आगे जाकर उनके आगे के करियर में भी काम आएगा। जब वो सीखते हैं कुछ भी, तो उनकी शिक्षा जो है वो कॉलेज पूरा हो जाने के वहां से खत्म नहीं होती, उनको लाइफ लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए, और खुद को अच्छी तरह से वो आगे जाकर कुछ भी जो करना है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी करने का जो है वो एक रेजिम बनाना चाहिए।
1: राजनमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र किस तरह रोजगार और नए अवसरों का माध्यम बन सकता है।
0: बहुत बड़ा बन सकता है। कईयों को गलतफहमी है कि सिर्फ खेलना ही एक माध्यम है रोजगार का। यू कैन बिकम अ कोच, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे रूट्स है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ने का। आप अगर पुराने भी खिलाड़ी है तो यू कैन ज्वाइन इन, और आप फिर वर्कफोर्स में रह सकते हैं, खेल से जुड़ सकते हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खेलते रहें, पढ़ते रहें, और अपना जो आत्मविश्वास है उसको किसी को कम करने का मौका ना दें। वो नशीले पदार्थों से दूर रहिए, और फिर जब आपका कोई दोस्त या साथी कुछ अच्छा कर दिखाता है तो आप उसका भी आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी हार को जीत में बदलें, और कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।
2: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फरतनाज़।

मीडियम में 297.6 मीटर था 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता। चुरी की घड़ी में समय हो गया है 7:45 का और आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम दर्पण अपनी दोस्त पापिया के साथ। तो चलिए दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक नजर से। हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय यानी समाज के उस आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना जो किसी वजह से पीछे रह गया है। ये दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है उनके अंत्योदय के विचार को याद करते हुए। लेकिन अंत्योदय की भावना सिर्फ बड़ी योजनाओं या नीतियों से तक सीमित नहीं होती। अपने आसपास किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी बच्चे को पढ़ाई में सहयोग देना, किसी बुजुर्ग का हाथ थामना या किसी ऐसे व्यक्ति को अवसर देना जिसे उसकी जरूरत है, ये भी उसी सोच का हिस्सा है। क्योंकि समाज की असली खुशहाली तब है जब तरक्की सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे जरूरत है, यही अंत्योदय की भावना है। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं दूसरे विषय की ओर। बेटियां घर में सिर्फ खुशियां नहीं लाती, वे घर की कहानी में अपना एक खूबसूरत अध्याय जोड़ती है। कभी पापा की लाडली, कभी माँ की सबसे अच्छी दोस्त, कभी भाई बहन की सबसे प्यारी साथी। बेटी की मौजूदगी घर को एक अलग ही रंग देती है। आने वाले रविवार

0: यानी कि 27 सितंबर को मनाया जाता है डॉटर्स डे यानी बेटी दिवस। ये दिन बेटियों के प्रति अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त करने का एक खूबसूरत मौका है। आज की बेटी अपने सपने देखती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है और अपने फैसलों के साथ आगे बढ़ना भी जानती है। इसलिए उन्हें सिर्फ प्यार नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा, बराबर के अवसर और अपने सपनों को पूरा करने का भरोसा देना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपके घर में भी बेटी है तो इस डॉटर्स डे पर उसे एक बार जरूर कहिए, तुम हमारे लिए बहुत खास हो और तुम्हारे सपनों की उड़ान हमारे लिए उतनी ही मायने रखती है। तो ये थी एक नजर अंत्योदय दिवस और डॉटर्स डे पर। आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले एक विशेष सूचना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कार्यक्रम के अगले पड़ाव में बात करते हैं कानूनी प्रावधानों पर आधारित हमारे विशेष कार्यक्रम विधि विधान और समाधान के बारे में। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विधि विधान और समाधान। आज का हमारा विषय एक ऐसा विषय है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ चुका है। मोबाइल फोन, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, सोशल मीडिया, ईमेल, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल हस्ताक्षर आज हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो तकनीक से अछूता हो। लेकिन जिस तेजी से डिजिटल दुनिया आगे बढ़ी है उसी के साथ साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर हमारे साथ धोखाधड़ी करे, हमारी पहचान का गलत इस्तेमाल करे, हमारी निजी डेटा चुरा ले या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाए तो कानून क्या कहता है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए भारत एक महत्वपूर्ण कानून इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लेके आया। भारत में ये अधिनियम 9 जून 2000 को बनाया गया और 17 अक्टूबर 2000 से लागू हुआ। इसका मूल उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले लेन देन को कानूनी मान्यता देना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ई कॉमर्स की सुविधा देना तथा सरकारी सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों और सूचनाओं का इस्तेमाल को कानूनी आधार प्रदान करना था। अधिनियम का उद्देश्य केवल साइबर अपराधों से निपटना नहीं था, शुरुआत में इसका एक बड़ा उद्देश्य डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी ढांचा देना भी था। यानी जिस समय इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल आज की तुलना में बहुत कम था, उस समय ही भारत ने यह समझ लिया कि आने वाले समय में कागज पर होने वाले कई काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे और उसके लिए कानून में भी व्यवस्था जरूरी होगी। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण आधार भी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता। इसका अर्थ ये है कि सिर्फ इसलिए किसी रिकॉर्ड या दस्तावेज को अमान्य माना जा सकता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, इसी तरह डिजिटल माध्यम से होने वाले कुछ लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को भी कानून के दायरे में मान्यता दी गई। दोस्तों, आज हम जिस डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करते हैं उसकी कानूनी व्यवस्था भी इसी ढांचे का हिस्सा है। इसका महत्व खासतौर पर उन सरकारी और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में दिखाई देता है जहां किसी व्यक्ति या संस्था की डिजिटल पहचान और प्रामाणिकता सुनिश्चित करनी होती है। लेकिन इंटरनेट के विस्तार के साथ परिस्थितियां बदलती गई। ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ी, ई कॉमर्स बढ़ा, सोशल मीडिया आया, स्मार्टफोन आम हुआ और साइबर अपराध के नए तरीके भी सामने आए। इसलिए मूल अधिनियम में बदलाव की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद आया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। इस संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी 5 फरवरी 2009 को मिली और इसके प्रावधानों ने मूल कानून के कई महत्वपूर्ण तरीकों से विस्तृत किया। संशोधन के पीछे साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जैसे विषयों को अधिक व्यापक कानूनी ढांचे में लाने की आवश्यकता भी थी। अब बात करते हैं उन धाराओं की जिनका सामान्य नागरिक के साथ जानना के लिए जानना खास तौर पर उपयोगी है। सबसे पहले बात

43 की। यदि किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को बिना अनुमति नुकसान पहुंचाया जाता है, डेटा को नुकसान पहुंचाया जाता है या किसी कंप्यूटर संसाधन में अनधिकृत तरीके से हस्तक्षेप किया जाता है तो कानून में उसके लिए क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करके आपकी फाइलें खराब कर देता है या डेटा को नुकसान पहुंचाता है तो ये केवल ऑनलाइन शरारत नहीं है, इसके कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। इसके बाद आती है धारा 43A, जो कुछ परिस्थितियों में किसी संस्था द्वारा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय न अपनाने से जुड़ी जिम्मेदारी तय करती है। इसके बाद आती है धारा 67। धारा 43 में बताए गए कुछ कृत्य यदि बेईमानी या धोखाधड़ी की मंशा से किए जाते हैं तो वे कंप्यूटर से जुड़े अपराध के रूप में दंडनीय हो सकता है। यही वो हिस्सा है जहां कंप्यूटर से जुड़े अनाधिकृत या धोखाधड़ीपूर्ण सिर्फ काम सिर्फ नुकसान की भरपाई तक सीमित नहीं रहते बल्कि आपराधिक दायरे में भी आ सकते हैं। आज के समय में एक बहुत आम साइबर अपराध है आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी। इससे जुड़ी है धारा 67C। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान संबंधी सुविधा का धोखाधड़ी से इस्तेमाल करता है तो यह पहचान की चोरी दायरे में आती है। दोस्तों, आजकल हम ऐसे मामले सुनते हैं जहां कोई व्यक्ति बैंक अधिकारी बनकर फोन करता है, कोई खुद को पुलिस अधिकारी बताता है, कोई रिश्तेदार बनकर पैसे मांगता है तो कोई नकली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर OTP या बैंक संबंधी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। हर मामले में परिस्थितियां अलग होती है, लेकिन यदि कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति का रूप धारण कर धोखाधड़ी की जाती है तो IT एक्ट संबंधित धाराएं लागू हो ही जाती है उन पर। अब चलिए बात करते हैं साइबर आतंकवाद की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67F साइबर टेररिज्म से संबंधित है। ये दिखाता है कि कानून ने साइबर अपराध को केवल किसी व्यक्ति के मोबाइल या कंप्यूटर तक सीमित विषय नहीं माना बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर साइबर खतरों को भी कानूनी ढांचे में शामिल किया है। अब एक बहुत चर्चित प्रावधान है धारा 67A। कई लोग आज भी मानते हैं कि 67A के तहत आपत्तिजनक ऑनलाइन संदेश भेजना अपराध है, लेकिन यहाँ स्थिति स्पष्ट समझनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में धारा 67A के असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। इसलिए आज किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल 67A के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये उदाहरण हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि सिर्फ किसी कानून की पुरानी धारा का नाम सुन लेना पर्याप्त नहीं, ये देखना भी जरूरी है कि वो प्रावधान वर्तमान में लागू है भी या नहीं।

दोस्तों, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ने भारत में डिजिटल लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक संचार को कानूनी आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद के संशोधनों और नियमों के साथ इसका दायरा साइबर अपराध, डिजिटल पहचान, प्राइवेसी, इंटरमीडिएटरीज, साइबर सिक्योरिटी और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों का विस्तृत हुआ। लेकिन कानून जानना और कानून का सही इस्तेमाल करना तो अलग बातें हैं। किसी साइबर घटना में कौन सी धारा लागू होगी, ये घटना तथ्यों, उपलब्ध सबूतों और वर्तमान कानून पर निर्भर करता है। इसलिए गंभीर मामले में पुलिस, साइबर सेल या योग्य कानूनी विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित है। तो आज की चर्चा से इतना जरूर याद रखें कि इंटरनेट की दुनिया आभासी हो सकती है, लेकिन यहाँ किए गए कामों के कानूनी परिणाम बिल्कुल वास्तविक हो सकते हैं। तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठाइए, लेकिन अपनी प्राइवेसी, पासवर्ड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन की सुरक्षा को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि साइबर दुनिया में सबसे अच्छी सुरक्षा केवल मजबूत कानूनी नहीं बल्कि जागरूक नागरिक और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार भी है। इसी संदेश के साथ आज के विधि विधान और समाधान कार्यक्रम में दीजिए मुझे अनुमति। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कानूनी प्रावधानों पर आधारित कार्यक्रम विधि विधान और समाधान। कार्यक्रम दर्पण में आगे बढ़ते हुए चलते चलते कार्यक्रम का आखिरी गीत सुन लेते हैं, फिल्म ताल से, जी हाँ, जिसे गाया है अनुराधा श्रीराम, सुजाता मोहन, सोनू निगम और एआर रहमान ने। और इस गाने के साथ ही मैं पापिया भी लेती हूँ आप सभी से विदा। फिर किसी दिन मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ यूं ही मीडियम बीप 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता।

0: নানা রঙের গান অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ হলো। কিছুক্ষণ পরেই শুনবেন পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
3: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
2: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
3: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया, जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
4: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
3: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्सपा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफ्सपा को बढ़ाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 एसोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
6: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
1: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है।

0: कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
1: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
1: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
2: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.57 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और प्रवीण कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा 6ठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
1: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
3: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
1: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
2: योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम 4 में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय योशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3, 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग हांग टैंग की चुनौती होगी। ये योशना का एशियाई खेलों में 6ठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2, 11-5, 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4, 11-3, 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारत के वीर चोटरानी को 41 मिनट में 6-11, 11-8, 11-3, 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in Kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
2: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3

0: ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
0: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12, 19-21, 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार दिग्गज की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elhamra Zord, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th respectively in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
3: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया। पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी। सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा। अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई। भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी। प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली। यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया।
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar.

0: ताजा रिपोर्ट।
1: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी। निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के

0: Indians were in action in canoe. Sakshi Manwal has all the details.
1: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished 5th in the men's kayak double 500-meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished 3rd among 4 pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500-meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished 4th among 5 pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500-meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
0: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
2: भारत को तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य, हिमांशु सिंह, तेजस पाटिल और कर रहे थे। वैसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
0: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Amrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samay Rabu, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
3: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जय सूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझो एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
0: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
1: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner, and they ultimately went on to win the series 2-0.
0: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
1: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेटलिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशु से आया है, और 11 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट द टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टेबल। पहला स्थान लिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विद अ टोटल ऑफ 157 मेडल्स, जिसमें से 97 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके पास कुल मिलाकर 113 मेडल्स हैं, 27 गोल्ड, 42 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके पास कुल मिलाकर 64 मेडल्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स।
0: It's another exciting day of the Asian Games 2026, with the Indian athletes looking to improve their medal tally on day 7 in Aichi Nagoya. In athletics, Savan Barwal and Karthik Arkera will try to go for gold in the men's marathon final. There was gold in shooting today. Will there be one tomorrow? As the women's 50-meter 3B position, individual and team final will take place with Ashish Chaudhary, Tilottama Sen and Vidarsha Vinod in action. Raju Nawat and Neha Devi will try to get India a medal in the canoe sprint mixed canoe double 500 final. There's also mixed doubles semi-final action with Joshua Chinnappa and V. Senthil Kumar flying the Indian flag. Early morning at 9:30 a.m. it's a big women's kabaddi final between India and Iran. There's also women's single semi-final action in squash with Anah

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।